कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से, मासूम, पवित्र और सीधे सीधे सच्चाई से भरे हुए प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, और बहुत सारे अलग अलग विषय होंगे जिससे हम अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाएं। तो हमारे साथ है महुआ चक्रवर्ती जी, बाकी मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। यूं तो मैं भी उनको उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बताएंगे महुआ जी, तो हमारे सुनने वालों को ज्यादा कनेक्शन लगेगा आपसे। तो आपका स्वागत है, प्लीज अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन हैं आप?
1: जी समीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए, दिव्य दर्शन और आप ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं मुझे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे आपने बताया, महुआ चक्रवर्ती तो मेरा नाम है, बंगाली हूँ, बट मेरा जो जन्म हुआ है वो उड़ीसा के एक टाउन में, राउरकेला नामक टाउन में हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड, वो है इंजीनियरिंग की, और फिर उसके बाद करीब 24 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। बट जिंदगी में शायद शुरुआत से ही जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा और मैं सीखते चली गई, जीवन चेंज होने लगा। और अभी मैं, जैसे लास्ट ईयर ही नवंबर में मैंने रिजाइन किया स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, ताकि मैं फुल फ्लेजेड जो है किसी पर्पस लेड काम के लिए अपना जिंदगी का वो कर सकूं, उस पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि 12 साल से, पिछले 12 साल से, करीब 2013 से मैं बहुत कुछ अलग भी कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस थे, यू नो, मेरे मेरे एक जो छोटा भाई था, उसका अचानक से डेथ होने पे, और फिर उसके लेस देन अ ईयर फिर मेरे पापा का चले जाने से, तो बहुत जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की और जिम्मेदारी बहुत थी, और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा था कि लाइफ को और गहराई से समझना। तो ये चलता रहा सिलसिला, तो तब से मेरी जो खोज थी वो स्टार्ट हो गई थी डीपर सेंस में, कि जिंदगी में एक्चुअली क्या होता है और सिर्फ लाइफ टू डेथ ही जिंदगी नहीं होती। तो उस पे मैं कुछ काम कर रही थी लोगों के साथ, एंड इन द स्पेस ऑफ हिप्नोथेरेपी, इन द स्पेस ऑफ न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये सब चीजों पे, और काउंसलिंग थेरेपी, एंड तो वो मैं जो है मैं अपना साइड में करती थी, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो 2-3 साल से कॉलिंग बहुत स्ट्रांग होने लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इट वाज अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इतना भरा पूरा जो है जॉब छोड़ना इतना इजी डिसीजन नहीं होता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरा लाइफ का पर्पस ये है तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो अभी मैं महुआ लाइफ साइंसेस जो है मेरी संस्था, उसकी फाउंडर हूँ, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का काम करती है। इट्स एन एमलगेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस।
0: वाओ, दिस इज वन बिग टास्क जो आप कैरी कर रही हैं, वेरी वेरी सिंसियर, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे जो रीजन आपने मुझे बताया वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। ठीक है महुआ जी, तो थैंक यू सो मच, हमें पता लगा कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बातचीत करें, इस पॉडकास्ट के बारे में बातचीत करें, तो जैसा आपने अभी अभी अपने परिचय में बताया, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन वैल्यूज, और किस तरीके से हम अपने को कनेक्ट कर सकते हैं टू अ हायर पावर, अपने अंदर के अपने सोए हुए जो विचार हैं, शायद उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू हम बाहर निकालें, रिजॉल्व करें। सो स्पिरिचुअलिटी के

0: बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में, जिसके बारे में ये प्रोग्राम है, आपको कब सुनने में आया, कब आपको पता चला या किसने बताया? व्हेन?
1: देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं. अगर मैं अपना हिस्ट्री में देखूं, इट वाज परहैप्स कहीं पे इनग्रेन्ड था शायद. और अभी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरे जो जो हमारे जो फॉर्मेटिव एज से हम गुजरे हैं, मुझे लगता है कहीं पे ये 1900 का दशक में ना स्पिरिचुअलिटी का जो दौर था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था. अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे दादाजी उससे पहले जो थे, परहैप्स 1800s, लेट 1800s में, तब वो बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव था. बट आई थिंक 1900 से लेकर 2000 के बीच ये थोड़ा सा ये जो सारे रिवोल्यूशन हुए ना हमारे, आफ्टर द फ्रीडम, आवर फ्रीडम स्ट्रगल और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सब के चक्कर में पीपल वेंट इनटू अ सर्वाइवल मोड, जो कि तब वो सर्वाइवल एंड जॉब एंड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान आने लग गया. तो मैं अगर अपना अपना खास करके अपना बचपन देखूं, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत कुछ होता था. हम जाते थे रामकृष्ण मिशन, हमारे घर में दुर्गाष्टमी का पूजा होता था, तो वो सब तो होता था. बट आई कंसिडर देम एज वेरी रिचुअलिस्टिक. मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, या इससे ऐसा होता है, ये कनेक्शन बन सकता है. ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कभी. ये तो मेरे ख्याल से मैंने थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स ही सीखा है. और जैसे मैंने आपको बताया, 2013 में लाइफ उससे पहले बहुत अलग थी, लेकिन 2013 से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर. एंड आई थिंक तभी से मुझे ये इसका आभास हुआ स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मैंने मैंने वो खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया. तो मेरे मेरे लिए तो मेरे ख्याल से तभी से ये बहुत ज्यादा डेप्थ पकड़ा.
0: ऑलराइट, आई गेट इट मैम. बिल्कुल फ्लो है जिंदगी का, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे या सही पाथ पे लेके जाता है. और वैसे भी अगर हम कनेक्ट करें अपने आप को, और फिर जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की बात आप जो कर रही हैं, उसमें वी ऑल टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ विद ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें बताए ही, हम रियलाइज भी कर लेते हैं उसको. तो चलिए, मुझे फिर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा मतलब समझाइए ना, अध्यात्म का मतलब समझाइए. क्या समझूं मैं अध्यात्म से?
1: देखिए समीर जी, मेरे लिए जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग द ट्रुथ, द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रुथ. और हमें वो ट्रुथ कहाँ मिलेगा? वो ट्रुथ हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट्स ऑल माया, जैसे हम जानते हैं. तो हमें वो इल्यूजन से दूर होके हमें वो ट्रुथ को सीख करना है. तो उसके लिए हमें, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हमें जो है अपनी अंदरूनी जो हमारी जो जर्नी है उसे शुरू करना बहुत जरूरी है. तो हमें इनवर्ड फेस करना पड़ेगा पहले. हम जो है बाहर मुखी होके हैं, अभी सारा दुनिया को देख रहे हैं, बट द मोमेंट वी टर्न इनवर्ड्स एंड मूव इनसाइड अस, तब जो है हम अपने अपने आप को ढूंढ पाएंगे. एंड फॉर मी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है नोइंग योर स्पिरिट. और स्पिरिट तो सोल ही है, हमारी आत्मा ही है. तो अपने जो असली स्वरूप से जुड़ना, उसी को मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वही स्पिरिचुअलिटी है. इट इज बेसिकली, क्योंकि देखिए, जैसे बाहर जो होता है ना, वो आपके भीतर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो आप बाहर देखते हैं. जैसे हम बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब है कि माइक्रोकॉजम जो है वो वही मैक्रोकॉजम हमें दिखाता है. मैक्रोकॉजम इज द यूनिवर्स एंड माइक्रोकॉजम इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस, इनसाइड आवर बॉडी. तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, यही समाई हुई है हमारे अंदर भी, वही वही सारे स्ट्रक्चर्स, वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे तत्व सब हमारे अंदर ही हैं. तो जिस वक्त हम जो है कि जगत को जानने का कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगेगा. तो अच्छा यही है कि पहले हम अपने आप से शुरू करें. तो मुझे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगेगी, क्योंकि हम अवेयर होते रहेंगे कि हम, सपोज कोई इंसान जो है ना, बहुत, सपोज लेट्स से बहुत एंग्री काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसे क्या दिखेगा दुनिया में? उसे हर चीज में गुस्सा ही आएगा, हर इंसान के ऊपर उसको एंगर ही आएगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा। हो सकता है कोई पास्ट अनहील्ड उसका, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है जो अनहील्ड है, या किसी वजह से वो अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया, तो वो इंसान जो है वो हमेशा गुस्सा करेगा। हम क्या सोचते हैं जनरली कि अरे ये तो इतना गुस्सा है इंसान है, इससे बात ही मत करो, इसको अवॉइड करो, इसको ऐसे करो, बट कोई जानने का कोशिश नहीं करता है कि हर इंसान का अपना पास्ट होता है और उसका जो प्रेजेंट होता है वो बहुत प्रभावित होता है उसके पास्ट से। तो मैं मतलब अपने तरफ से बोलूँ ना समीर जी, तो मुझे हमेशा, मैं किसी को भी पहले देखती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपना वो पास्ट लेके आया है, एंड दैट इटसेल्फ इज व्हाट आई फील इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए। आप बहुत ज्यादा अपना जो परसेप्शन है, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हमारा बिलीव्स, वैल्यूज, जैसे आप बता रहे थे ना कि वैल्यू सिस्टम से, बिलीव से हमारे जो थॉट्स हैं उसी से बनते हैं, और उसी को अगर हम थोड़ा सा नलिफाई कर देते हैं तो हमारा जो है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो हम बेहतर समझ सकेंगे किसी और को। सो ये इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, जब आपका मन, आपकी जो आपकी आत्मा, आपका जो डायरेक्शन जो भी है आप ले रहे हैं जिंदगी का, वो सारी चीज जो अलाइन हो, तभी आपका जो रिलेशन है अपने साथ वो बहुत ज्यादा फर्म बनते जाएगा, एंड इट विल बिकम डिवाइन इन इटसेल्फ, बिकॉज यू आर देन बिकमिंग प्योर, राइट? एक एक लेयर आपका निकलते जा रहा है, एंड यू आर बिकमिंग ग्रॉस से सटल की तरफ आप जा रहे हो, आप प्योर बनते जा रहे हो, अपने आप यू नो थिंग्स फॉल इन प्लेस, एंड दैट इज वॉट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी।
0: राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपने बिल्कुल सही सही बहुत मतलब नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में ही क्लियर बताया है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से सभी के लिए। तो अगर हम आज की डेट में हैं तो हम ट्राई करते हैं जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उनके लिए हम थोड़ी चीजें क्लियर करें, क्योंकि बहुत साफ बात है इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को अभी नहीं होगा कि वो इतनी गहराई में जाएं इन चीजों की। तो आपको क्या लगता है जो आपने डेफिनेशन अभी दी या एक्सप्लेन किया, यूथ को अगर इसको समझाएं, आज की जनरेशन को इसको समझाएं कि भला देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, और वो अच्छा मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती कि यूथ आज की डेट में या कहें तो कभी का भी इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये चीज मैं प्रैक्टिस करूं मैम तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है। तो हाउ वुड वी एक्सप्लेन दिस टू द जनरेशन, द यंग जनरेशन, कि स्पिरिचुअलिटी ये है और आपके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ पीसफुली। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू देम?
1: मुझे लगता है देखिए आज का जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, एंड वी कैन नॉट नेगेट दिस फैक्ट समीर जी। मुझे लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है वर्ल्ड में ऑलरेडी, दे आर वेरी अवेयर। ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग विच आई रियली रिस्पेक्ट आज के जनरेशन में। हाँ, दो तरह की चीजें होती है यहाँ पे, बट मुझे लगता है जो इनर सीकिंग है ना, मतलब टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, जो आपने बताया कि हमें क्या मिलेगा इससे, ये जो क्वेश्चनिंग ऑफ द नॉर्म है, नॉट नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज इट इज, किसी ने बोला, हमारी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या वो कर रहे थे इसलिए हमें भी करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड इट इज नॉट इन अ इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, या डिसेंट कर रहे हैं, या वो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें पूछ रहे हैं। एंड आई आई रियली मेरे भी दो बच्चे हैं समीर जी, मेरा बेटा जो है 15 साल का है, बेटी 11 साल की है, तो जब वो, मेरा बेटा ऐसा ही है कि वो हर चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करता है नॉर्म को, वो मुझे क्वेश्चन करता है मम्मा ऐसे क्यों करना है मुझे, और माई माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिकॉज दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एज इज एक्सेप्ट कर लेना है, इट इज लाइक आइदर आई कन्विंस यू और यू यू नो कन्विंस मी, एंड हूएवर कन्विंसेस ईच अदर इज वॉट वी नीड टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, राइट? ये जबरदस्ती नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है। तो जैसे मैं बता रही थी, तो एक इनर सीकिंग जो है ना आज की जेनरेशन में कुछ लोगों में ऑलरेडी ये चीज है। अब ये बात अलग है कि देखिए, यंग जब होते हैं बच्चे या एडोलेसेंस या टीनेजर्स में, वो तो हमें सभी लोग वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, और हमें पता है कि देर इज एन हार्मोनल सर्ज, और थोड़ा सा वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं उनका, वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं बाहर की चीजों से, तो इस वजह से थोड़ा उनका अप डाउन होता है। बट द गुड थिंग इज कि दे सीख, दे आर क्वेश्चनिंग ओल्ड सिस्टम, वो लोग जो है मीनिंग खोज रहे हैं, वो लोग इमोशनल सेफ्टी खोज रहे हैं, पर्पस खोज रहे हैं अपने काम से। तो ये बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन है। एट द सेम टाइम जो एक चीज जो है ना कि स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रेंड भी बन गया है, ये मैं पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को नहीं बोल रही हूँ, दे आर ओनली कंज्यूमिंग, राइट, दे आर सीइंग व्हाट दे व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड टू देम, बट ये जो ट्रेंड है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ। जो आजकल बहुत सारे ऐसे कुछ भी रील्स बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सी दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप सब्जेक्ट्स, राइट। स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वेरी डीप थिंग, इट इज अ वेरी पर्सनल जर्नी किसी की, इट इज नॉट आउट इन द ओपन। हाँ, आप बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ जो लोग लाइक माइंडेड है, जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन इज व्हाट आई फील। क्योंकि बहुत लोग आएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, एंड उसको मजाक में उड़ा के चले जाएंगे, विच पेन्स मी ऑनेस्टली। मुझे बहुत ये पेन करता है, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन इज व्हाट आई फील। एंड अभी इसको क्या है ना कि अभी अपियरेंस को भी इसके साथ क्या बोलूं मैं आपको, इसको मिला दिए हैं। ऐसा दिखना चाहिए, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसे तिलक लगाना चाहिए, उसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी, लाइक आई सेड, इज अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ इनवर्ड जर्नी। आप कितना सिंपल इंसान है वो डिपिक्ट करता है, मन से आप कितना डीप है, कितना डिसिप्लिन है, कितना हम्बल है, कितनी रेजिलियंट है, वो डिपिक्ट करता है आपका स्पिरिचुअल डेप्थ को। और ये जो ट्रेंड वाला चीज है ना, वो मुझे नहीं पसंद है ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, इस बार जो ये जो आपका कुंभ मेला जो हुआ था लास्ट हमारा,
0: जी
1: इसमें आप देखिए, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 60-70 करोड़ पीपल वेंट देयर। एंड आई हैव सीन, मैंने मतलब मेरे कितने जान पहचान के लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे समीर जी, दे वेंट इन द लास्ट लेग, लाइक लास्ट 1 वीक, वो फेब्रवरी का 3rd वीक, 2nd वीक, 20 तारीख, 22 तारीख को, वो लोग मतलब टू जस्ट एंश्योर कि दे डोंट मिस अपॉन एनीथिंग, मतलब ताकि वो आके इंस्टा में अपना पोस्ट दे सके। दिस रियली हर्ट मी, बिकॉज आई नो पर्सनली कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुंभ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई फील इज नॉट ओके। और ये जो बहुत सारे जो जस्ट टू कैच अप विद द ट्रेंड जो करते हैं ना, वो नहीं, मुझे आई थिंक दैट इज नॉट ओके। बट अदरवाइज वेर एवर पीपल आर डूइंग विद द राइट इंटेंट, नहीं जानना एक चीज है विच इज एब्सोल्युटली फाइन, हर किसी को हर चीज नहीं पता होता है, एंड वही सीखने का तरीका है। बट ये जो है ना कि थोड़ा बहुत वो जो ट्रेंड फॉलो करना जस्ट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, एंड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ओनली दैट, इज समथिंग दैट आई थिंक इज समवेयर दिस जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ टेक अ बैक सीट ऑन। क्योंकि स्पिरिचुअल, ये आप देखिए, ट्रू स्पिरिचुअल जो आदमी होगा ना, वो आप वो बहुत सॉफ्ट एंड हम्बल होगा अंदर से, ये आपको ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देगा। दैट डजेंट मीन दैट यू आर वीक, वो आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगा, बहुत स्ट्रांग, ताकि आप एकदम सेंटर्ड रह सके, आप मोर रिस्पॉन्सिबल हो सके, लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं करेंगे, यू विल बी विद इन योर सेल्फ।
0: आई गेट इट, आई गेट इट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ट्रेंडिंग होना, फोमो कि को भी वही करना है जो सारी दुनिया कर रही है, अदरवाइज पीपल विल कॉल मी स्टूपिड फूल। ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। युवाओं की बात हो रही थी, बात हो रही थी कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को ये चीज सिखाएं, तो यहां पर बस रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड आई हैव अ भजन स्पेसिफिकली फॉर यंग जनरेशन, तो आई वुड जस्ट लाइक टू प्ले इट हियर. थैंक यू मैम.

0: यस मैम, ऑफ कोर्स। अब बात यह हो गई कि हम लोग इसी दुनिया में हैं, मैं हुई, आप भी, और हम स्पिरिचुअलिटी की सीरियसनेस को या इसकी क्वालिटी को समझ पा रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं, जैसा आपने अभी अभी बताया, कि यूथ के लिए या जनरेशन के लिए जो कि बहुत ज्यादा एंक्शस है जानने के लिए, वो क्वेश्चन पूछती है, तो उनको भी हमें समझाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अब आज के जमाने में। और फिर आपने तो बताया कि आप आईटी प्रोफेशनल रहे 2 decades, 20 years, मोर देन 20 years। तो जो आज की डेट में टूल्स अवेलेबल है, दैट इज सोशल मीडिया। आज के वक्त में सबके हाथ में फोन है और हर वक्त ही सोशल मीडिया में डूबा हुआ है। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए मैम, जो लोग समझ पा रहे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से सही रूप में, उसके ट्रू एसेंस में, उसकी आत्मा के तरीके से इनको कैसे समझाया जाए। तो सोशल मीडिया का यूज करें तो हाउ वुड वी डू दैट, क्योंकि तो आप तो आईटी प्रोफेशनल रहे इसलिए पूछ रहा हूं।
1: देखिए, टेक्नोलॉजी का जो है ना बहुत महत्व है समीर जी, हमें सिर्फ उसका यूसेज का ध्यान रखना है। एंड जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये सारी चीजें जो है ये कंटेंट कंजम्पशन रूट में ना चले जाए, ये हमें ध्यान रखना है। इट इज खाली कंज्यूम ना करें, बट टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अभी रोल है। एंड स्पेशली सोशल मीडिया जो आपने पूछा ना, वो बहुत एक्सेसिबल कर दिया है, उसने कर दिया है स्पिरिचुअलिटी को, विच इज वेरी गुड। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पहले मेरी मम्मी इज लाइक 72 years एंड शी इज अगेन अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वुमन, तो उन्हें वो संस्कार चैनल, वो सब जो भी है ना आपका, वो सारे चैनल्स देखना उनको बहुत पसंद है। Now every time she stays some days with me, I mean few months with me and few months with my sister, तो वो जो है जब ही आती है तो, क्योंकि मेरे घर में टीवी देखने का मुझे टाइम ही नहीं है ऑनेस्टली, तो बाकी बच्चे जो देखते हैं अपना, एंड तो मैं जनरली वो चैनल्स एक्टिवेटेड नहीं रखती हूँ। तो जब भी मेरी मम्मी आती थी पहले, तो वो हमेशा बोलती थी कि बेटा मैं तुम मेरे लिए वो चैनल्स वापस से एक्टिवेट करा दो। तो मैं जैसे ही वो आती थी तो मैं उसको वापस से कर देती थी। She used to enjoy all her whatever she watches. Now, अभी जब से वो स्मार्टफोन उनके पास आया है, she doesn't depend on me and those TV channels.
0: Okay.
1: क्योंकि she is now self-sufficient. I said कि मम्मी क्या चैनल, बोले कि नहीं टीवी में ठीक है जो है ठीक है, बट जनरली वो सुबह वगैरह वो जब उठ जाती है, वो तो 4 बजे उठती है अपना, एंड वो अपना उठ के गीता पाठ वो सब अपना खुद ही लगा लेती है। मतलब इवन टीवी में भी विदाउट द डिश टीवी, शी हैज दिस, वी हैव इंटरनेट राइट, सो यूट्यूब में अपना हरे कृष्णा टीवी जो भी अपना देखना होता है उनको आराम से लगा लेती है एंड बैठ के देखती है वो। और घर में भी कुछ कुछ चलते रहता है मंत्र पाठ वगैरह, तो एक वाइब्रेशन भी बना रहता है अच्छा सा। सो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं भी खुद जब ड्राइव, मतलब ऑफिस जाना होता है, कहीं लॉन्ग ड्राइव में मैं जाती हूँ 1 घंटा का, बैंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही है, तो मैं जो है मैं कुछ तो लगा देती हूँ अपना, मतलब यू नो, सो दैट आई एम आइदर आई डू गीता सारांश, या फिर मैं सुनते रहती हूँ स्वामी अवधेशानंद स्वामी जी का, उनका अपना देखते रहती हूँ। मैं खुद क्रिया योग में इनिशिएटेड हूँ तो मैं उसके ऊपर कुछ अपना देखने लगती हूँ। तो जो भी मेरा अपना चॉइस है, या आई लुक फॉर, आई मीन आई हियर फॉर सम लीडर्स का अपना, उनका कुछ सुनते रहती हूँ। सो आई ट्राई टू यूज, तो आप देखिए कितना वो एडवांटेज बन गया हमारा कि सोशल मीडिया है या आपका जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग अगर सदुपयोग कर सके तो उसको हम लोग कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो डूम स्क्रोलिंग में आ जाता है, या आप जो बोलते हैं ना बिंज वॉचिंग में आ जाता है कि एवरी सेकेंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग इट विदाउट स्टॉपिंग, तो वो चीज जो है देन इट इज कंज्यूमिंग यू देन राइट, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। आपका जो टाइम, आपका जो पूरा दिन, वो जो है हम अपना बेकार कर देते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन को लेके जब तक हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट में या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ यूज कर सके, आई थिंक इट इज अ बून, बड़ा ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। बट अगर वो ना हो सके देन दैट बिकम्स अ लिटिल चैलेंज। तो और एक चीज
0: जी, जी, जी.
1: या और एक चीज जो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जो मैं सोशल मीडिया में स्पेशली इंस्टाग्राम एंड वो सब में ना आप देखेंगे कि काफी लोग जो है ना जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो रेलेवेंस कितना है उनका, जो भी नॉलेज लेवल या अपना लाइफ एक्सपीरियंस से या जो भी है वो लेके बोल रहे हैं विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दे आर जस्ट कंटेंट मेकिंग मशीन्स कि जो भी जो भी आज किसी ने किया तो उसको कॉपी करके 4 वायरल, 10 15 20 वायरल वही टॉपिक पे वही चीज पे, चाहे रेवेडी हो चाहे कुछ हो, तो कुछ हो, अब कोई नहीं देख रहा है कि देखो इसका रेलेवेंस क्या है, इसमें सही है कि नहीं है। पीपल कंज्यूम कर रहे हैं ना, बहुत लोग क्या होता है ना जो नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये ओरिजिनल क्या है या ऑथेंटिक कंटेंट क्या है एंड ये सारे जो कुछ फेक भी होते हैं वो सब क्या है, तो उन वो लोग क्या होते हैं ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मुझे उसी चीज से थोड़ा सा घबराहट होती है कि मैं बोलती भी हूँ लोगों को एंड समटाइम्स स्कूल्स का भी कभी कभी मुझे बुलाते हैं फॉर सम टॉपिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट टॉपिक्स के लिए, बच्चों को बात करने के लिए, तो मैं वही बोलती हूँ बेटा देखो यू हैव टू वॉच थिंग्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स, किसी का भी कुछ भी नहीं सुन लो, आप थोड़ा सा देख लो एंड देन यू कंज्यूम एंड डोंट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू, थोड़ा सा आप थोड़ा सा यू रिसर्च, यू स्टडी, यू अंडरस्टैंड एंड देन सी इफ इट इज रियली रेजोनेटिंग आपके साथ, वो बैठ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है।
0: आई गेट इट मैम, आई गेट इट, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब भी जब आप बता रहे थे ना, तो फिर आई रियलाइज्ड वन थिंग विच इज एक्चुअली प्रॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ। लेकिन बस मैं आई जस्ट टेक ए स्मॉल पॉज, एक प्यारा सा भजन यहाँ पर पेश करके मैं वापस आता हूँ आपके पास।

0: तो मैम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आई गॉट इंट्रीग्ड अबाउट दिस न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी आपने जैसे सोशल मीडिया के बारे में, उसको यूज करते हुए हम किसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बताया मुझे. तो आपका जो ये एक्सपर्टीज है न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो मैम, इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, और फिर ये बताइए कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद द अमलगमेशन ऑफ सोशल मीडिया टू गिव अ राइट मैसेज टू टुडेज वर्ल्ड.
1: देखिए, जैसे मैं बता रही थी ना कि 2013 से जब से ये इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, तो आई वाज अ वेरी साइंस ओरिएंटेड पर्सन, रैशनल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे हमारा होता है ना. बट क्या हुआ ना, जब जब व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, आई वाज इन अ कंप्लीट डिनायल मोड. आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर एटलीस्ट 2-3 months, एंड इट वाज अ वेरी सडन थिंग विच हैपेंड. एंड तब ना मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि लाइफ इज मोर देन व्हाट वी सी विथ आर फिजिकल आईज, विच इज लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ. देर हैज टू बी समथिंग विच इज बियॉन्ड दीज टू विंडोज, एंड दैट इज वेयर माई ओन क्वेस्ट, मेरा जो क्वेस्ट स्पिरिचुअलिटी का, वो स्टार्ट हुआ. और फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी, अध्ययन करने लग गई. मैं सीखना चाह रही थी, मैं डेस्परेटली गुरु खोज रही थी कि कोई मुझे बताए कि क्या होता है. एंड तब, समीर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ कुछ मेरे साथ मेटाफिजिकल थिंग्स भी हुए, जो शायद लोगों को, अभी मैं सोचूं तो अभी तो समझ में आता है, तब मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एंड देन आई अंडरस्टूड कि नो, दिस इज सो. तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आई स्टार्टेड विथ रेकी हीलिंग. उसके बाद मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जो होता है ना, कि आप आप यू कैन रीड, यू जोन इन टू अ थिंग, हाउ यू सेंटर योर सेल्फ, फिर उसके बाद आप उस पर मेडिटेट करके आप कैसे किसी के रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो, हाउ यू कैन अलाइन योर सोल, व्हाट, हाउ यू कैन नो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. तो बहुत डीप वो होने लगा. एंड जब जब मैं बात करने लगी लोगों के साथ, तो फिर जब मैं उनको रीडिंग्स बताती थी, तो वो बहुत उनके लिए भी बहुत हैरत वाले चीज होते थे, क्योंकि उनको भी कभी बहुत कभी उनको ऐसा, वो लोग कभी सोचे ही नहीं, बट जैसे जैसे मैं बताती गई तो उनको फील होने लगा कि हाँ, ऐसा तो है, ऐसा तो है. एंड तब से मुझे और ज्यादा इंट्रीग करने लगा ये. तो मैं फिर ह्यूमन बिहेवियर और न्यूरो साइंस पे बहुत अध्ययन की, स्टडी की. एंड देन आई ऑल्सो डिड माई 5 levels ऑफ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी, जहां पे आपका जो है सारा क्लिनिकल, जो भी हिप्नोथेरेपी आप जैसे जानते ही हैं, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द वेरी रिनाउम्ड पॉपुलर बिहेवियरल चेंज टूल, राइट. तो इट इज नॉट स्टेज हिप्नोसिस. बहुत लोगों का मिथ भी है कि स्टेज हिप्नोसिस जैसे किसी को वशीकरण कर लिया, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी टू दैट. दिस इज अ थेरापेटिक मोडालिटी. और जैसे आप जानते हैं कि ये जो सारे बड़े बड़े लीडर्स है ना, इंक्लूडिंग हमारे जो ओबामा है, या विराट कोहली बोल लीजिए, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का जो ब्रेन सर्जरी हुआ था, दैट वॉज अंडर हिप्नो एनेस्थेशिया. माने बिकॉज बिकॉज ही सी इन यूएस एंड अदर प्लेसेस दे गिव अ लॉट ऑफ इम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट, एंड ह्यूमन व्हाट डू यू से, ह्यूमन राइट्स एंड नीड्स. तो वो लोग हर चीज केमिकल इससे नहीं इंड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही जैसे दिया जाता है वहां पे, चॉइस भी दिया जाता है, फॉर एनी सर्जरी यू वॉन्ट हिप्नो एनेस्थेशिया और रेगुलर एनेस्थेशिया, केमिकल एनेस्थेशिया. सो देर आर मोडालिटी. सो उस पर मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने अपना स्टडीज किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सेम लाइफ रिग्रेशन इन बिटवीन, सो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में. सो वो सब फिर मेरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ये सब जैसे मैंने जैसे जैसे करते गई ना, तो बहुत चीजें ना क्लैरिटी, ये एक तरफ से हो रहा था जहां पे मैं सीख रही थी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स, और दूसरी तरफ से मेरा अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन जो हो रहा था अंदरूनी, जिससे मैं अपना साधना कर रही थी. तो पहले तो मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, फिर मैं 2018 में जब मैं बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट थी गुरु के तलाश में, एक बार मैं स्वामी योगानंदा का, मैंने वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था बहुत पहले, तो उसके तब तो कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे एक अजीब सा खिंचाव होने लगा कि जहां पे मुझे कोई तो बता रहा है, कुछ तो हो रहा है, जहां पे मुझे ये पता चला कि देर इज समथिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट, आई मीन आई हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, मतलब जो कि मैं पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ी हुई थी, एंड दैट केम टू मी एज क्रिया योग. तो मैं तब बहुत डेस्परेटली, अभी तो गुरु भी आपको पता है कि थिंग्स हैव समटाइम्स लिटिल कमर्शलाइज्ड एंड यू नो यू डोंट नो, यही मैं आपको समझा रही थी कि ऑथेंटिक और बहुत अच्छे लोग हैं और हमारी संस्कृति जो है, एंड वर्ल्ड में भी आई थिंक एवरी रिलीजन एवरी कंट्री हैज यू नो दीज जेम्स, बट दे आर ऑल हिडन, वी इट इज डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट पाथ कि हम उन तक पहुंच सके. तो बट आई एम बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे एक लिविंग मास्टर से इनिशिएशन हुआ क्रिया योग का. तो तब मेरा अपना वो भी रूट चल रहा था, एंड तो मैं ये दोनों का मिला के, मतलब स्पिरिचुअल और ये जो यू नो द साइंस न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव की व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, सो एक एक लोब्स का क्या होता है, कैसे अमिगडाला सर्वाइवल को वो करता है, कैसे हम यू नो बिहेव, क्यों हम बिहेव करते जो हम करते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, क्यों कोई लोग इस तरह करते हैं, सेम सेम ट्रिगर पॉइंट में एक आदमी किसी तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा आदमी अलग तरह से बिहेव कर रहा है, व्हाई डज दिस हैपन, तो ये सारी चीजें. और जब आई स्टार्टेड वर्किंग विथ क्लाइंट्स तो ये बहुत ज्यादा यू नो और रिवील होने लगा, एक एक लेयर एज इफ, एंड वही चीज मुझे ना आगे और उसपे रिसर्च करने स्टडी करने के लिए हेल्प करते रहा. आज जो मैं करती हूँ कि अभी बिकॉज आई हैव डन यू नो आई वर्क विथ मेनी पीपल ये 13-12-13 साल में, तो अभी और एक जो वो तो मैं करती हूँ थेरापेटिक प्रैक्टिस, बट उससे भी जो अभी लास्ट 7-8 साल से जो मैंने रिसर्च करके एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है, एक प्रोग्राम है जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करती हूँ, उसका नाम है मातृत्व, जिसमें हम जो है ना गर्भ संस्कार, जो हमारे जो अभिमन्यु एंड प्रहलाद के टाइम के जो चीजें हैं, या गर्भ उपनिषद में जो लिखा गया है, जो जो हमारे वेदाज में लिखा गया है, उसका जो वो 9 महीने कैसे एक इंसान का एक लाइफ टाइम डिसाइड करता है, दोज 9 मंथ्स डिसाइड 90 ईयर्स ऑफ लाइफ, कैसे वो होता है और कैसे वो 9 महीना गर्भ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर नॉट ओनली द सोल दैट इज कमिंग, एंड इवन प्री कॉन्सेप्शन कि माँ बाप क्या कर सकते हैं टू इनवाइट यू नो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोल, अ प्योर सोल इनटू देयर लाइव्स, उसकी क्या क्या वो है, वो सब के ऊपर मैं यू नो पोस्ट बनाती हूँ, सोशल मीडिया में पोस्ट करती हूँ, एंड आई डू क्लासेस ऑल्सो, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन दोज ऑल्सो, एक जर्नी है. तो एंड देन ये जो आप सोशल मीडिया के थ्रू से इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने का बात कर रहे हैं, ये तो ब्लॉग से या आपके जो पॉडकास्ट से या फिर सोच लीजिए आपका जो भी यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, चाहे थॉट लीडरशिप हो, चाहे आपका यूट्यूब वीडियोस हो, फेसबुक वीडियोस हो, ये जितना हो सके, मतलब डिपेंडिंग ऑन माय बैंडविड्थ, मैं करते रहती हूँ ताकि ये अवेयरनेस बढ़ते रहे.

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल मैम. बस चलते चलते मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, वो डू यू थिंक, बिकॉज आप न्यूरोसाइंसेज में भी हैं, आज के जमाने में हैं, डीप स्टडी की है, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यू माइट बी एबल टू एक्सपेक्ट वॉट इज गोइंग टू कम इन नियर फ्यूचर और मे बी इन फार फ्यूचर. क्या लगता है आपको, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्या ये और पावरफुल होगी, लोगों के पास जाएगी या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड मे बी जिंदगी, लोगों की जिंदगी और बहुत खूबसूरत हो जाए. सो वट इज द फ्यूचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैन यू पॉसिबली सी?
1: मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है समीर जी, बहुत ब्राइट है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, अभी बहुत अवेयरनेस आने लगी है लोगों को. लोग अभी जिंदगी ऐसे नहीं जीते हैं, जैसे मैं आपको बताई ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है. मैं भी कभी बचपन में आई हैव नॉट सीन यू नो लिटरल सेंस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने अपने घर में नहीं देखा. हो सकता है बहुत सारे घर में हो. यस, देयर हैज बीन रिचुअल्स, मंदिर जाना, टेंपल जाना, वो अलग चीज होता है. बट ये जो अपने लिए, बिकॉज एक तरफ देखिए आप, बाहरी दुनिया में ना स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है एवरी डे, बिकॉज आप देर इज यू नो टेक्नोलॉजी, नाउ AI, देर इज सो मच स्पीड एंड कॉम्पिटिशन, और अनसर्टेनिटी भी बढ़ते जा रही है. इस वजह से जो है ना, ह्यूमन का जो बेसिक नीड है, कोर जो हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो कि लाइफ में मीनिंग लाने का, एक ग्राउंडेड रहने का, एक जो इमोशनल सेफ्टी, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप का जो डेप्थ, अपने अंदर का जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का वो जो चाव है, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है. पहले शायद थी, बट अभी मुझे लगता है और ज्यादा होते जा रही है, क्योंकि ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड. तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी पे बहुत लोग लीन करने लगे हैं, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि इससे उनको बहुत फायदा भी मिल रहा है. तो आउटर इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इनर विजडम के बिना

0: है वो लाइफ फ्रेगमेंटेड फील होता है लोगों को, और इस वजह से वो लोग जुड़ने लगे हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे कल्ट या बहुत सारे जो चीजें हैं, लोग मेंटोर्स गुरुज के पास, एंड एवरी एस्पेक्ट आप देखिए लीडरशिप में भी, हमारी ऑफिस में, कंपनीज में, एट एवरी लेवल, सीईओ लेवल में भी पीपल आर गोइंग बैक। अभी एक लीडरशिप ट्रेनिंग अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज सीएक्सओ का ट्रेनिंग हो रहा है, इट इज नॉट ऑन टेक्नोलॉजी, उसका जो कोचिंग हो रहा है, बिकॉज आई डू कोचिंग ऑल्सो, वो कोचिंग जो है ना, इट हैज टू बी 360 डिग्री, कि कोई इंसान जो है उसका लाइफ इज लाइक अ पाई, यू नो पिज्जा का जो वो होता है ना, एक एक एक एक स्लाइस जो है एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिपिक्ट करता है, उसमें करियर या वर्क या जो भी है वो एक स्लाइस है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका जो फैमिली, उसका जो पैशन एंड उसका अपना जो हॉबीज, फ्रेंड्स, वो सब चीज मिला के उसकी जिंदगी है। तो अगर हम सिर्फ एक ही चीज में फोकस करेंगे तो दैट विल नॉट यील्ड, आप हेल्थ उसमें सफर करेगा या रिलेशनशिप सफर करेगा, या हो सकता है पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो एक कोई फुलफिलमेंट नहीं फील होगा। सो इस फुलफिलमेंट को फील करने के लिए ये जो लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये हमें देता है स्पिरिचुअलिटी। ये लोग समझने लगे हैं कि हमें सेंटर्ड रहना है, हमें कॉन्शियस रहना है, इमोशनली कैसे हम रेगुलेटेड रह सकते हैं, और पर्पस ड्रिवन लाइफ लीड करना है। हम 80 साल में पहले क्या था कि रिटायरमेंट तक कर लिया, फिर घर बना लिया, बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो देख के हम खुश होके हमारी जिंदगी, क्योंकि लाइफ इजी था, लाइफ वॉज सिंपल दैट टाइम, तो उनको दैट वॉज वॉट दे सीक्ड। बट आज की जिंदगी में लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि फाइनली वी हैव टू सोचना पड़ता है कि फुलफिलमेंट कैसे फील होगा। हर हर स्टेप में हमें ये फील होने लगा है, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है अभी हमें और ज्यादा डीपली रूटेड होना पड़ेगा ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड जो हो रहा है, एंड इट विल ओनली इंक्रीज।
1: जी बिल्कुल सही बात है। आगे फ्यूचर में यूं तो हम भविष्यवेत्ता नहीं है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न अराउंड, एंड अच्छी तरीके से हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंशियली अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। तो मौवा मैम, बस चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? गिव अ मैसेज टू देम सो दैट दे कैन टेक इट होम, थिंक ओवर इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।
0: देखिए सिंपल सा मैसेज यही है कि लाइफ को सिंपली लीड करिए, कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेशंस का, डजंट मैटर एक्सटर्नल वैलिडेशन का, वो थोड़ा सा पॉज करिए। मुझे पता है आंख जैसे ही बंद करते लगता है सारा दुनिया छूट जा रहा है हमसे, हम पीछे रह गए हैं, ये सबसे बड़ा डर होता है हमारा लाइफ का। बट हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता है, आप मूवमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट प्रोग्रेस नहीं है वो, प्रोग्रेस तो है जो आप अपना गोल की तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है पॉज करना जरूरी है, थोड़ा सा रुक रुक के, एक एक फेज में, साल में एक बार, 5-6 दिन का 4 दिन का आप रुक के ना थोड़ा सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए अपना लाइफ का, कि मैं सही भी जा रहा हूँ कि मुझे रास्ता थोड़ा कोर्स करेक्शन करना है। बस ऐसे आप करते रहोगे ना तो जिंदगी एकदम, आप कहीं गलती का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे भी तो यू हैव टाइम, यू हैव देन पॉज टू रियलाइज इट एंड मेक करेक्शंस। सिंपल सा है,
1: राइट? अमेजिंग। सो दोस्तों, टेक होम मैसेज जो एटलीस्ट पूरे बातचीत में मौवा मैडम से मुझे मिला है, वो इमीडिएटली तो यही है, जस्ट गो स्लो, द म्यूजिक वोंट लास्ट बट योर लाइफ शुड बी, सो टेक इट इजी, इतनी तेज तेज भागने की जरूरत नहीं है। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, थिंक, अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। मौवा मैम ने कहा ना, सुबह सुबह एक थोड़ा सा मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब क्या है, ये वक्त अपने साथ गुजारने की बात है। बहुत खूब मौवा मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस वी हैड टूडे। बहुत सारी बातें अभी सोचने की हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, आई मीन दो आई डू मेडिटेशन, बट आज की रात में मेडिटेशन का यही टॉपिक होने वाला है मेरे लिए। लेट मी जस्ट थिंक आपने जो कुछ भी कहा है, तो थैंक यू सो मच मौवा मैम, आपका बहुत बहुत आभार है। I would like to sincerely convey my regards to you and thanks to you. Thank you, ma'am.
0: Thank you so much, Sameer ji. It was so nice. बहुत interesting बातें की आपने आज और privilege है. मैं भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका और आपके चैनल का और आशा करती हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा वैल्यू एड हो पाएगा. विद दैट थैंक यू सो मच.
2: ओम भास्कराय नमः.
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर, मुझे यानी आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा को। आज की बातें इधर की उधर की शुरू करते हैं एक गाने से, एक ऐसा गाना जो हमने शादियों में सुना है, महफिलों में सुना है, सूफी कॉन्सर्ट्स में सुना है। छाप तिलक सब छीनी रे,

कभी सोचा है ये गाना असल में किसके लिए लिखा गया था? किसी दुल्हन के लिए, प्रेमिका के लिए? नहीं दोस्तों, ये एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए लिखा था और इसके पीछे की कहानी शायद गाने से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दिल्ली, जी हाँ दिल्ली, लगभग 700 साल पहले की दिल्ली। एक सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। उनके दरवाजे पर रोज लोग अपना दुख लेकर आते थे। कोई परेशान था, कोई टूटा हुआ था, कोई उम्मीद लेकर आया था। लेकिन एक दिन गुरु खुद टूट गए। उन्होंने अपना कोई बहुत ही करीबी खो दिया था। ना वो किसी से ठीक से मिलते थे, ना बात कर रहे थे, ना मुस्कुरा रहे थे। सोचिए, जो इंसान हजारों लोगों के आंसू पोंछता था, आज उसे अपने खुद के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तब उनके एक शिष्य आए, नाम था अमीर खुसरो। जी हाँ, खुसरो ने देखा कि गुरु का मन कितना उदास है। अब वो क्या करते? कोई भारी प्रवचन देते, कहते गुरुजी सब माया है? नहीं, खुसरो ने कुछ और किया। उन्होंने बातों से बहुत आगे चलकर कुछ और किया। उन्होंने पीले कपड़े पहने, हाथ में सरसों के पीले फूल लिए और गुरु के सामने नाचने और गाने लगे। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक उदास माहौल और बीच में एक आदमी पीले कपड़ों में फूल लेकर नाच रहा है। लोग सोच रहे होंगे, भाई इनको क्या हो गया, कोई इन्हें रोको। लेकिन खुसरो को पता था, कभी कभी दर्द का इलाज समझना नहीं होता, समझाना नहीं होता, बस किसी के चेहरे पर एक मुस्कान वापस लानी होती है। और हुआ भी वही। निजामुद्दीन औलिया बहुत दिनों बाद मुस्कुरा उठे। कहते हैं खुसरो ने ये दृश्य वसंत के रंग से प्रेरित होकर रचा। पीला रंग, सरसों के फूल, नई ऋतु और एक शिष्य का अपने गुरु के लिए प्रेम, यहीं से जुड़ी है वो मशहूर रचना। छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिले के। अब एक मिनट, छाप का मतलब क्या होता है? पहचान। और तिलक एक पहचान का निशान। तो खुसरो कह रहे हैं, तुमने एक ही नजर से मेरी सारी पहचान छीन ली। मैं जो था वो मैं नहीं रहा। और यही तो गहरे प्रेम की अजीब बात है। जब हम किसी को सच में अपना मान लेते हैं तो उसकी खुशी में हम खुश होते हैं, उसका दर्द हमें चुभता है और उसकी जीत पर लगता है जैसे मैं जीत गया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी अपने को दुखी देखा और बिना उसके कुछ कहे आपका मन भारी हो गया, आपके दो आंसू छलक आए? या किसी अपने की सफलता पर आपको ऐसा लगा कि मेडल आप ही को मिला है? यही तो है मैं और तुम के बीच की दीवार जो गिर जाती है। चलिए रेडियो के इस पल में एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस इस बार दिल से सोचिएगा। आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसकी खुशी आपको अपनी खुशी लगती है, जिसके दर्द की खबर मिलते ही आपका दिल हल्का सा रुक जाता है, जिसके सामने आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती? हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है कोई दोस्त, कोई गुरु,
कोई जीवन साथी या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका नाम आपने कभी किसी को बताया तक नहीं, बस दिल ही दिल में प्यार करते रहे, प्रेम करते रहे, बस उस चेहरे को याद रखिए। प्रेम कोई एक पहचान नहीं। खुसरो और निजामुद्दीन की कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, इसमें प्रेम की एकता है। वसंत एक अलग परंपरा से आया है और खुसरो उसके रंग को अपने गुरु के आंगन में ले आए। ना किसी ने पूछा ये किसका त्योहार है, किस जाति का त्योहार है, ना किसी ने दीवार खड़ी करी। बस एक बात थी उस माहौल में जो था प्रेम। शायद इसीलिए 700 साल के बाद भी वो गीत इतना जिंदा लगता है। हम उसे शादी में गाते हैं, महफिल में गाते हैं, सूफी कलामों में सुनते हैं और हर बार वो कुछ ना कुछ कह जाता है। लेकिन इस कहानी का एक बहुत भारी हिस्सा भी है। एक दिन निजामुद्दीन औलिया दुनिया से चले गए और उस वक्त खुसरो उनके पास नहीं थे। जब उन्हें खबर मिली खुसरो टूट गए। खुसरो की छाप तिलक तो हम जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक और पंक्ति दी है, चल खुसरो घर अपने, रैन भाई चहूं देस। अर्थ जैसे रात हो गई है, अब घर लौट चलो खुसरो। गुरु चले गए और जैसे उनकी रोशनी भी साथ चली गई। कुछ ही समय बाद खुसरो भी दुनिया से चले गए। आज दिल्ली की निजामुद्दीन में गुरु और शिष्य की मजारें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। जैसे कहानी अब भी वही है, गुरु आगे और शिष्य उनके कदमों के पास। तो दोस्तों, हम जिंदगी भर अपनी छाप बचाने में लगे रहते हैं, कभी बचाने में कभी बनाने में। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरी जगह क्या है, लेकिन कभी कभी प्रेम आता है और कहता है थोड़ा सा अपने आप को छोड़ो। इसका मतलब खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि इतना बड़ा हो जाना कि अपने अंदर किसी और के लिए भी जगह बन जाए। जैसे एक बूंद समुंदर में गिरती है ना, तो वो खत्म नहीं होती, समुंदर का हिस्सा बन जाती है। अगली बार जब कहीं आप छाप तिलक सुने, सिर्फ इसे एक शादी का गाना या एक सूफी गाना मत समझिए। एक पल के लिए याद कीजिए एक ऐसा शिष्य जिसने पीले कपड़े पहने, हाथ में सरसों के फूल लिए और अपने टूटे हुए गुरु के सामने नाच कर उनकी मुस्कान वापस ला दी। शायद प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप वही है, जब हम किसी को बदलने की नहीं, बस उसके चेहरे पर फिर से वो पुरानी रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। जाने से पहले एक सवाल और आपके लिए, आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसने आपको खुद से बेहतर बनाया है, आपका छाप तिलक छीन लिया है? नाम जरूरी नहीं, बस आज दिल से उनके लिए शुक्रिया कहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक थोड़ा कम मैं और थोड़ा ज्यादा हम बनकर तो देखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू जो है पैराशूट बेच रहा था बाजार में, चिल्ला चिल्ला के बोले, हवाई जहाज से कूदो, बटन दबाओ और जमीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। तो एक ने पूछा कि भैया अगर पैराशूट ना खुला बटन दबाने के बाद? तो चिंटू बोला, पूरे पैसे वापस।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे आपकी अपनी आज तनुषा आपके तरानों की हम सफर को। आज की कहानी एक तितली की है। जी हाँ, एक तितली की है, एक बेटी की है, एक पिता की याद की है और एक ऐसी यात्रा की है जहाँ मंजिल सिर्फ एक तितली को ढूंढना नहीं था, मंजिल थी एक पिता को दोबारा पाना। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ तितली है और उस तितली का नाम आपके पिता के नाम पर रखा गया है, तो क्या आप भी उसे ढूंढने निकल जाएंगे? फोटोग्राफर रेना एफेंडी ने यही किया और उनकी कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही अजीब भी है। रेना के पिता रुस्तम एफेंडी एक मशहूर बटरफ्लाई साइंटिस्ट थे, यानी तितलियों के जानकार थे। बचपन से ही उन्हें तितलियों का जुनून सा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों तितलियों का अध्ययन किया था, लेकिन उनकी बेटी रेना को कई सालों बाद पता चला कि एक तितली का नाम उनके पिता के नाम पर भी रखा गया है, सेटियरस एफेंडी। एक दिन रेना ने अपने पिता का नाम इंटरनेट पर खोजा और उन्हें इस तितली के बारे में पता चला। सोचिए, पिता दुनिया में है नहीं, लेकिन कहीं दूर पहाड़ों में एक छोटी सी तितली है, उनके नाम को अपने पंखों पर लेकर उड़ रही है। कितनी अजीब बात है ना? इंसान चला जाता है, लेकिन कभी कभी उसका काम, उसका नाम प्रकृति में गूंजता रहता है, उड़ता रहता है, अपने रंग फैलाता रहता है। अब कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग होती है। ये तितली जिस पहाड़ी इलाके में मिलती है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का एक क्षेत्र है, दो देश जिनके बीच लंबे समय तक तनाव और संघर्ष रहा है। और जिस सीमा के आसपास ये तितली उड़ती है वहां पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। रेना के पिता कभी इन इलाकों में बिल्कुल आसानी से आते जाते थे। उनके लिए ये पहाड़ तितलियों की एक दुनिया थे, लेकिन वक्त बदल गया और जहां कभी लोग आते जाते थे वहां सीमाएं आ गईं। जहां कभी रेलवे चलती थी वहां जंग के निशान रह गए। और रेना ने सोचा, मैं भी वही रास्ता ढूंढूंगी जहां कभी मेरे पिता चले थे। अब जरा सोचिए, क्या रेना एफेंडी सिर्फ एक तितली के पीछे जा रही थी? शायद नहीं, वो अपने पिता की यादों के पीछे पीछे जा रही थी। उन्होंने अपने पिता को बचपन में तितलियों के पीछे जाते देखा था और अब वो खुद उन्हीं पहाड़ों में खड़ी थी। बस फर्क इतना था, पिता की जगह अब बेटी थी। कितनी अजीब होती है ये यादें। कभी एक पुराना गाना, कभी किसी की खुशबू, कभी एक जगह और कभी बस एक तितली। और अचानक कोई इंसान हमें बहुत दूर होते हुए भी बहुत पास महसूस होने लगता है। रेना की तलाश उन्हें आर्मेनिया ले गई। वहां उनकी मुलाकात हुई पार्केव करजानिया से। पार्केव एक आर्मेनियन इंसेक्ट कलेक्टर और टैक्सीडर्मिस्ट थे, और सबसे खास बात, वो रेना के पिता के दोस्त और शिष्य रह चुके थे। रुस्तम अफेंडी उनसे उम्र में काफी बड़े थे। उन्होंने पार्केव को तितलियों को ढूंढना, पकड़ना और संभालना सिखाया था। पार्केव ने रेना के पिता को याद करते हुए कहा, दोनों एक ही सेब के दो हिस्से थे। जरा सोचिए, एक बेटी अपने पिता की तलाश में एक दूसरे देश पहुंचती है, क्या ये मुलाकात किसी खजाने से कम थी? बिल्कुल नहीं। पार्केव के घर में पुराने जमाने की चीजें थी,
वो टैक्सीडर्मिस्ट थे और पुराने डब्बों में तितलियों के कलेक्शंस, पुराने औजार और उनमें छुपी छुपी बहुत सारी यादें, फ्रैगमेंट्स ऑफ अ शेयर्ड पास्ट, जैसे एक कमरा नहीं पूरा गुजरा हुआ वक्त संभाल कर रखा। और फिर रेना ने वो तितली देखी, सेटियरिस एफेंडी, एक ऐसी तितली जिसका नाम उसके पिता से जुड़ा था। सोचिए, आप अपने पिता को छू नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन आपके सामने एक जीव है जिसके नाम में उनकी याद जिंदा है। और दोस्तों, यहीं से मेरी और आपकी बात शुरू होती है, हमारी बातें इधर की उधर की में। हम जिंदगी में कितनी चीजें संभाल कर रखते हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स, लेटर्स, किसी का दिया हुआ पेन, माँ की पुरानी रेसिपी, पापा की घड़ी या किसी अपने की आवाज की रिकॉर्डिंग। क्यों? चीजें कीमती इसलिए नहीं होती क्योंकि वो महंगी होती हैं। वो कीमती इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें किसी अपने का हिस्सा रह जाता है। और रेना के लिए शायद वो तितली भी एक ऐसी ही याद थी। अब आप बताइए, अगर आपको अपने किसी बहुत खास इंसान की याद से जुड़ी सिर्फ एक चीज बचानी हो तो वो क्या होगी? एक फोटो, एक गाना, एक खत, एक पुरानी जगह, एक आवाज की रिकॉर्डिंग या कोई छोटी सी चीज जिसे दुनिया देखे तो कह पड़े इसमें क्या खास है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। शायद यादें भी तितलियों की जैसी होती हैं। उन्हें मुट्ठी में बंद करोगे तो टूट जाएंगी, लेकिन उन्हें प्यार से याद करोगे, उन्हें उड़ने दोगे तो बार बार आपके आसपास आके उड़ेंगी और आपके मन को प्रफुल्लित करेंगी और आपके मन में अपने उन खूबसूरत रंगों के एहसास छोड़ जाएंगी। रेना की कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी कभी हम किसी इंसान को दोबारा पाने के लिए उसके कदमों के निशानों को ढूंढते हैं और रास्ते में हमें सिर्फ वो इंसान नहीं मिलता, हमें अपना एक ऐसा हिस्सा भी मिल जाता है जो शायद हम बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। एक बेटी एक तितली को ढूंढने निकली थी, लेकिन रास्ते में उसे अपने पिता की दुनिया मिल गई। और शायद ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है। मंजिल मिल जाए ये जरूरी नहीं, कभी कभी सफर ही हमें वो दे जाता है जिसकी तलाश में हम निकले थे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। आज किसी अपने को याद कीजिए, शायद एक पुरानी तस्वीर देख लीजिए, शायद उनका पसंदीदा गाना सुन लीजिए, और अगर मुमकिन हो तो उन्हें बता दीजिए कि आप उन्हें याद करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, बहुत नाजुक, बहुत खूबसूरत और वक्त से भी बहुत ज्यादा कीमती। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: आज के जमाने में सत्संग देखो भैया वही बढ़िया होता है, जहां पर पोहा मिले, गरम गरम चाय मिले, मंगो

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे मुझे यानी आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा को। और आज की बातें इधर की उधर की में हम थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी गहरी, थोड़ी सी अंदर जाने वाली बातों को डिस्कस करेंगे। आज की बात अलग है, ना कोई बड़ी कहानी है, ना कोई लेक्चर है, बस एक आपका आपसे सवाल है। आपने आखिरी बार खुद से सच में खुद से बात कब करी थी? फोन से तो रोज ही बात होती है, व्हाट्सएप से होती है, इंस्टाग्राम से होती है, सभी लोगों से हम हर समय कनेक्टेड है, लेकिन खुद से, जी हाँ आपसे। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान दुनिया से नहीं अपने आप से हारने लगता है, और फिर एक दिन वो चुपचाप आईने के सामने बैठ जाता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, जब इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि अपना दर्द किसी के साथ कह नहीं पाता, तो एक दिन वो आईने के सामने बैठकर रो पड़ता है, क्योंकि आईना सवाल नहीं करता। आईना ये नहीं कहता कि तुम इतने कमजोर कब हो गए, तुमने खुद को संभाला क्यों नहीं, तुमसे गलती कैसे हो गई। वो बस सामने रहता है, शांत, चुप, अडोल। आप रोते हैं और वो आपको रोता हुआ देखता है। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और वो भी देख लेता है। और शायद इसीलिए कभी कभी आईना इंसान का सबसे खामोश दोस्त बन जाता है। सोचिए, आप आईने के सामने बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, और मन में सिर्फ एक सवाल है, मेरे साथ ही क्यों, ये दर्द मुझे ही क्यों मिला, ये रिश्ता क्यों टूटा, ये मौका मेरे हाथ से क्यों गया। जिस इंसान पर भरोसा किया उसने क्यों तोड़ दिया, मैं ही क्यों। कभी आपने सवाल पूछा है खुद से? मुझे लगता है बहुत लोगों ने पूछा होगा, बस सबने किसी को बताया नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप आईने के सामने बैठे हैं, आप रो रहे हैं, और अचानक आपका रिफ्लेक्शन आपसे बात करता है। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता क्यों, मैं ये भी नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूं, तुम अब भी यहां हो, तुम टूटे नहीं हो, खत्म नहीं हुए, तुम रोए हो लेकिन हार नहीं गए, तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, तुम्हारे अंदर दर्द है लेकिन तुम्हारे अंदर सांसें भी हैं, और जब तक सांसें हैं कहानी बाकी है। हम अक्सर दर्द को सजा समझ लेते हैं, लेकिन हर दर्द सजा नहीं होता। कभी कभी दर्द हमें वो सिखा देता है जो सुकून कभी नहीं सिखा पाता। जिस दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है हम खुद को बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जब जिंदगी हमें हिला देती है तब पता चलता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हवा तेज चलती है तो वो झुकता है, लेकिन हर बार वो टूट नहीं जाता। शायद इंसान को भी वही सीखना है, झुकना कमजोरी नहीं है, रुकना कमजोरी नहीं है। कभी कभी झुकना, कभी कभी रुकना टूटने से बचाता है। और हाँ, अगर आज आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना,
तो बस एक काम कीजिए मेरे कहने पर, आज रात फोन थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, आईने के सामने बैठिए और खुद से पूछिए कि मैं कैसा हूं, कि मैं कैसी हूं। लेकिन इस बार खुद को जज मत कीजिएगा, बस जवाब सुनिए। अगर आंसू आते हैं तो आने दीजिए, हर आंसू को रोकना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आंखों का भी मन हल्का करने का अपना ही तरीका होता है। वैसे हम भी अजीब लोग हैं, दूसरे इंसान को उदास देखेंगे तो तुरंत बोल देंगे, अरे यार सब ठीक हो जाएगा, रोता क्यों है। लेकिन वही बात खुद पर लागू करने का वक्त आए तो दिमाग बोलेगा, नहीं भाई मेरी सिचुएशन तो अलग है। दोस्त को कहेंगे मूव ऑन कर, और खुद की बारी आएगी तो पुरानी चैट्स, पुरानी फोटोज, पुरानी मैसेजेस, सबकी अटेंडेंस लगवा लेंगे। लेकिन शायद हीलिंग का पहला कदम यही है, खुद को वही प्यार देना जो हम दूसरों को देने में इतने जेनरस होते हैं, इतने तत्पर होते हैं। दोस्तों जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ वादा करेंगे, कुछ वादे तोड़ देंगे, कुछ आपको समझेंगे और कुछ बिना समझे फैसला सुना देंगे। लेकिन एक इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा और वो है आप खुद। इसलिए खुद से नाराज रहना थोड़ा बंद कीजिए, अपनी पुरानी गलतियों को बार बार कोर्ट रूम में खड़ा मत कीजिए। आप उस वक्त जो जानते थे उसी हिसाब से आपने फैसले लिए थे, आज आप ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए आज आपको पुराना आप गलत लग रहा है, ये भी एक ग्रोथ ही तो है। तो अगली बार जब जिंदगी बहुत भारी लगे ना और आप आईने के सामने खड़े हों, तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, उन आंखों को भी देखिए जो इतना सब सहकर भी आपके साथ खड़ी हैं, उस इंसान को भी देखिए जो इतना सब सहकर भी आपके साथ खड़ा है। और अगर आईना बोल पाता तो शायद वो बस इतना ही कहता, मुझे पता है तुम बहुत रोए हो, लेकिन देखो तुम अब भी यही हो। और कभी कभी इतना याद रखना भी बहुत काफी है दोस्तों। मैं हूं आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे आज की थोड़ी भीगी हुई, थोड़ी गीली सी, थोड़ी सहमी सी, थोड़ी उदास सी, बट थोड़ी उम्मीद वाली बातें इधर की उधर की, Only on SN Radio and Radio Tatya Bhil 90.8 FM। आज किसी और से नहीं, थोड़ी सी बात खुद से कीजिए। हो सकता है जिस जवाब को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो बहुत देर से हमारे अंदर ही बैठा हो। झांक के देखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था भाई, पता है? कोई अगर अकेला बैठा हुआ ऐसे हंस रहा तो लोग कहा करते थे, भैया इस पे भूत प्रेत का साया है, इलाज विलाज कराओ, झाड़ फूक कराओ। लेकिन आजकल कोई अकेला बैठा हंस रहा हो ना तो कहते हैं, भाई वो मैसेज हमें भी फॉरवर्ड करना जरा।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो, हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थी लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थी। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। पांच, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी यह ध्यान रखना चाहिए
कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदी नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए, इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वो ही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं।

संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास, हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: अजय मुक्केबाज, MC मेरी कॉम।
2: भारत की MC मेरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की सेलुटा कुटा को 7-1 से हराया। अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
3: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
2: हाँ?
3: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मेरी कॉम कमाल है।
4: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
5: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
4: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो,
6: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
7: पापा, मैंने, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
6: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
7: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
6: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
7: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
6: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
5: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
4: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, 7 बहने कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ाचंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खट्टी उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद,
5: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थी
4: और इसी प्रक्रिया में मेनगे चंग नेजंग मैरी कॉम यानी MC मैरी कॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
5: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरी कॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
4: गरीब परिवार होने के कारण मैरी कॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
5: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शे वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।
0: आओ मैडम जी एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे।
1: सुनो ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरी कॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरी कॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरी कॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरी कॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरी कॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से
1: जी?
4: देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
2: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती। 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
3: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
2: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
1: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
2: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।
3: एक अजेय मुक्केबाज, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
5: मेरा प्यारा दोस्त,
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
8: यही कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
6: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
7: आइए खरीदिए, हमारे यहाँ हर नस्ल के पिल्ले उपलब्ध हैं।
6: यूजीन थोड़ा झिझका, कुछ पल बाहर खड़ा रहा।
7: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
6: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था।
7: यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था। इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
8: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं।

0: अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है। और ले, प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
0: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
0: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
0: नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
3: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अब अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
3: लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, उछल कूद नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ भी नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे मजाक ही कर रहे हो।
0: नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
0: तो यही इसकी कीमत भी है, इसकी खराब टांगे इसे किसी से कम तो नहीं कर देती। आप निश्चिंत रहिए, बाकी पैसे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। अब ये रहे 1500 रुपए,
3: अब
0: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा ये तुम्हारा।
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच। मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस।
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया।
3: नहीं यूजीन बेटा, देखो हम सभी बराबर हैं बेटा, हम सभी बराबर हैं।
0: नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार चुटलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
0: आजा। अरे आजा आजा।
1: दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कुंकू करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है।
2: वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: इंसुलिन की कहानी भाग 2।
7: बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी। संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़ खानों में ले गई, जहाँ मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी।
8: 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है।
9: प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें।
10: डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए।
9: जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है, उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है।
10: वेरी गुड।
9: पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है।
10: कौन सी समस्या?
9: हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए।
10: डॉक्टर बेंटिंग, पतझड़ का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है।
9: अच्छा, वो कौन है सर?
10: जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं।
9: अच्छा।
10: वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में पीएचडी की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे?
10: कोलिप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे।
9: जी सर।
10: उनका शोध कार्य होगा रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है, इस बारे में।
9: जी सर।
10: और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं, इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे।
9: जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा?
10: मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं।
9: जरूर।
10: अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।
9: बिल्कुल सर।
10: मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा।
9: धन्यवाद।
10: आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे।
9: आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
10: थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग।
7: बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज।
11: एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम तेजी से होने लगा। सवाल यह था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप अल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है,
12: मैंने कर दिखाया।
9: कॉलिप, शाबाश।
12: थैंक यू।
9: मुबारक हो, ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा।
12: हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था।
9: लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? हमें भी तो बताओ वो तरीका। मेरा मतलब विशुद्धिकरण के चरण।
12: मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियोड ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा।
9: हाँ हाँ, जरूर। आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करें।
12: जी जी, शुक्रिया।
7: बेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर? अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
11: सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहाँ एक मेहमान आया।

0: अंदर आ जाइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
2: बेंटिंग,
3: अरे तुम जोसेफ कितने कमजोर हो गए हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है।
2: बेंटिंग, मुझे

0: डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूं। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है।
1: जोसेफ, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
2: डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे।
1: जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे।
0: बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है?
1: जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया।
0: बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी।
1: हाँ।
0: पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
1: क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे।
0: क्यों बचकाना बातें कर रहे हो?
1: नहीं,
0: इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
1: नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
2: हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉमसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया।

0: डॉक्टर जेफरी?
1: यस।
0: वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ?
1: आपका मतलब है लियोनार्ड थॉमसन?
0: हाँ वही।
1: उसकी हालत तो बहुत गंभीर है।
0: हाँ?
1: वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है।
0: अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं?
1: जरूर।
0: तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन, इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है।
1: ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं।
0: ठीक है, आइए।
2: डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग।
0: अरे डॉक्टर जेफरी, आइए ना।
1: डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया, लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है।
0: अरे वाह।
1: उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए।
0: हाँ।
1: ये रिपोर्ट
0: लाइए।
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है
1: जी,
0: कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है
1: जी।
2: एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे, अगर हार्मोन इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है।
0: जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा।
3: मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी के बचने की उम्मीद है,
0: और ये उम्मीद जरूर कामयाब होगी।
3: लगा दो इंजेक्शन।
0: बस हो गया।
2: मानव हृदय में कुछ न कुछ आशा हमेशा बनी रहती है, और यही हालत थी फ्रेडरिक जोसेफ और चार्ल्स की। फ्रेडरिक की सारी उम्मीद इंसुलिन पर टिकी थी, कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई, उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी। फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे।
3: बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की।
0: शुक्रिया।
3: जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
0: अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी।
3: कोई बात नहीं दोस्त,
0: बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग,
0: अरे अरे आओ बेस्ट।
1: मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है।
0: अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है?
1: डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है।
0: अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है।
1: जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा।
0: जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ओंटारियो में पहुंच रहा हूं, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा।
1: जी,
0: अपना ख्याल रखना।

0: डॉक्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी।
1: हेलो
2: हेलो बेंटिंग।
1: हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ।
2: बेंटिंग, मैं जोसेफ।
1: अरे जोसेफ, कैसे हो तुम?
2: बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले, मेरी सांसें सहज हो गई।
1: क्या?
2: मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया।
1: सच्चो सर।
2: और जानते हो बेंटिंग,
1: हाँ?
2: मेरी भूख वापस लौट आई।
1: थैंक गॉड।
2: एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था।
1: ओ जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ।
2: बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग।
1: अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। जोसेफ, याद रखो, ये स्थायी निदान नहीं है। तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ
2: बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: अरे नहीं,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
1: नहीं जोसेफ, नहीं।
2: कैसे करूं?
1: अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के।
1: हाँ, जरूर मिलूंगा।
3: और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है।
0: दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोड ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियोड को उनके इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर यह खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बंटना चाहिए था, न कि उनके और मैकलियोड के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था।
1: सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: जानता हूँ सर, जानता हूँ, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियोड। ये बेस्ट थे जो बुनसन बर्नर के लॉ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे। और ये बेस्टी थे सर, जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे। शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे।
4: डॉक्टर बेंटिंग, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: सर, मैं आशा करता हूं कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूं। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूं सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता।
0: बेंटिंग पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंग ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंग ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी।

0: उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद को नाम दिया गया बेंटिंग एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च।
1: सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंग को सर की उपाधि से सम्मानित किया।
2: जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंग ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे। ऐसी ही एक उड़ान T-9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी।

0: साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
3: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म

0: कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
0: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
0: जी ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए डॉक्टर।
0: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
0: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी
1: और डॉक्टर साहब,
3: क्या फाइलेरिया की
1: बचा जा सकता
0: है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: जी जी, रात 10 बजे से 2 बजे तक जब आ जाता
0: है वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी जी,
3: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
4: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
5: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।
7: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफ़ी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नज़र डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफ़ी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वे ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान्य से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफ़ी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान्य से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग क्या कहता है, वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आपला रेडियो आपली बात है।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आपला रेडियो आपली बात है।
9: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
10: कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुवाई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुवाई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
9: ये हमारा पशुधन पर पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
10: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
11: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है तो ऐसे समय पे उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
10: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
11: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
10: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
11: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
10: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य न किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉलीहाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का

0: आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पोली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो केबीके रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने जुनून, समर्पण और जीवन अनुभवों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अरविंद कुमार सक्सेना जी, एक ऐसा नाम जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में लंबी और सफल सेवाएं देने के साथ साथ संगीत के प्रति अपने प्रेम को भी हमेशा जीवित रखा। आईसीआईसीआई बैंक से सेवानिवृत्त होने से पहले आपने बैंक ऑफ राजस्थान में भी अपनी सेवाएं दी। बैंकिंग और यूनियन गतिविधियों की व्यस्तताओं के बीच भी संगीत आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहा। बचपन से ही हारमोनियम वादन, शास्त्रीय संगीत की साधना और फिर वर्षों बाद दोबारा संगीत शिक्षा से जुड़ना आपकी यात्रा वास्तव में बेहद ही प्रेरणादायक रही है। आपने महेश मुसाफिर म्यूजिक एकेडमी से संगीत की नई शुरुआत की। कई मंचों पर आपने प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीता। साथ ही गीत संगीत ग्रुप ऑफ म्यूजिक कोटा के माध्यम से संगीत प्रेमियों को एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री अरविंद कुमार जी सक्सेना का, और जानते हैं उनकी जीवन यात्रा, संगीत साधना और यादगार अनुभवों के बारे में। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, मेरा भी सबको नमस्कार, श्रोताओं को और आप सबको।
1: तो चलिए अरविंद जी, शुरुआत करते हैं आपकी बातचीत से, और शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में हमें श्रोताओं को बताइए, जिससे पता लगे कि किस बैकग्राउंड से आप का संबंध रहा है, बताइए प्लीज।
2: मेरा जन्म झालरा पाटन जिला झालावाड़ में हुआ था, और मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे।
1: अच्छा।
2: प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी सवाई माधोपुर से हुई, क्योंकि उनका जॉब इस तरह का था, ट्रांसफर बहुत होते थे, तो उस समय वहाँ माधोपुर था, सवाई माधोपुर, तो वहां से मैंने पहली क्लास तो वहां से की। उसके बाद हम लोग कोटा ट्रांसफर हो गया पिताजी का, और उसके बाद हमेशा कोटा में ही रहे, सारी शिक्षा कोटा में ही हुई है मेरी।
1: ओके, वंडरफुल। अच्छा, तो ये बताइए, आप कोटा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी हो गया है अब तो हमारे देश का, तो आपने बताया कि आप कायस्थ परिवार से हैं, जहां संगीत का वातावरण शुरू से ही होता है। तो अभी बताइए, परिवार में भी कई लोग संगीत से जुड़े थे, कोई संगीत का शौक था, कैसे था, संगीत की परंपरा कैसे रही?
2: देखिए, मेरे घर में लगभग सभी लोग, मेरे बड़े ब्रदर को छोड़ के, सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। मेरी माता जो थी वो भी हारमोनियम भी बजाती थी, और ढोलक में उनके बहुत पारंगत थी।
1: अच्छा।
2: पिताजी मेरे तबला बजाते थे, उन्होंने बाकायदा शिक्षा ली हुई थी तबले की। और घर में सारे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सारे थे, हारमोनियम, ढोलक, तबला वगैरह, तो हम लोग शुरू से ही उसी माहौल में रहे। बड़ी सिस्टर है, वो भी मेरी हारमोनियम बजाती थी, और मदर कभी कभी जब भी गृहस्थी के कामों से फुर्सत होती थी वो बजाती थी। बस उनको देख करके मुझे प्रेरणा मिली, और मुझे भी लगाव हो गया हारमोनियम से, और शुरू हो गया तब से ही, बचपन से ही बजा रहे हैं।
1: तो हारमोनियम से आपका जुड़ाव शुरू से ही है, तो गाने के में अपने आपके परिवार में गाने का किसको शौक था? आपकी सिस्टर्स गाती थी या मदर गाती थी?
2: सभी गाते थे, मदर भी गाती थी, सिस्टर भी गाती थी। दो सिस्टर है, तो बड़ी वाली तो दोनों ही करती, छोटी भी गाती है, लेकिन वो गाती कम है, उसको भी ढोलक के अंदर मास्टरी है, ढोलक बहुत बढ़िया बजाती है।
1: अरे वाह।
2: तो लगभग सभी हमारे परिवार में, मैं दो भाई और दो बहने हैं, सिर्फ मेरे बड़े भाई थोड़ा सा अलग रहे, वो सुनने में रहे, कभी गाया नहीं, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं, बाकी बाकी सभी लोग संगीत से जुड़े हुए थे।
1: अरे चलो, तो मैं थोड़ा सा और पूछता हूँ, आप ये बताइए आपकी बचपन की क्या यादें हैं? इनफैक्ट आपका बचपन में भी अरविंद नाम ही है घर में, या कुछ घर में आपके परिवार वाले आपको कुछ किसी और नाम से भी बुलाते हैं? कोई जैसे बचपन में नाम होते हैं ना, मुन्ना है ऐसा, इस तरह के छोटे निकनेम्स होते हैं
2: घर में? क्या अशु के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मेरे को पहले हमारे जो ताऊ जी थे उन्होंने मेरा नाम रखा था अश्विनी,
1: अश्विनी। अच्छा अच्छा,
2: तो उसके वो अश्व अश्व कहने लगे, लेकिन मेरे को वो नाम पसंद आया नहीं, और मैंने अश्विनी कुमार, जब पहली क्लास में मैं भर्ती हुआ तो मैंने अपना नाम अरविंद कुमार सक्सेना लिखा दिया।
1: ओके
2: ओके, परिवार के लोग मेरे को अश्व के नाम से जानते हैं, यहाँ तक कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ लाड़पुरा से, लाड़पुरा कोटा से, वहां के भी जो पुराने लोग हैं मेरे साथी संगी हैं वो इसी नाम से जानते हैं।
1: हाँ हाँ, लाड़पुरा तो रामपुरा के बाद वाली जगह है, बड़ी अच्छी अंदर है, मतलब ओल्ड सिटी के अंदर ही है रादर,
2: ओल्ड सिटी में।
1: तो अरविंद जी, चलिए थोड़ा सा वातावरण को संगीतमय बनाते हैं। आपने संगीत की इतनी बात कर ली, बचपन की बात हो गई, आपकी माताजी की बात हो गई, आपकी बहनों की बात हो गई, तो कुछ क्या इच्छा हो रही है अंदर से, कोई गाना अगर हम इस स्टेज पे एक थोड़ा सा सुन लें और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं, तो थोड़ा माहौल बन जाएगा और आप भी सहज हो जाएंगे, तो एक गाना सुनाइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना मुकेश का गाया हुआ है,
1: बिल्कुल
2: वो मैं सुनाता हूँ आपको।
1: जी जी,
2: जिंदा हूँ इस तरह के गम में, जिंदा

0: नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गम में, जिंदगी नहीं।
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो यहूदी फिल्म का गाना है, मेरा भी फेवरेट
0: जी
1: गाना है, मुझे बहुत
0: जी
1: पसंद है। दिलीप कुमार की पिक्चर थी और शायद मीना कुमारी थी या मधुबाला थी, लेकिन बहुत बढ़िया पिक्चर थी। और ये तो लैंडमार्क गाना है मुकेश जी का,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: मजा आ गया। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी, अब तो आप सहज हो गए होंगे। अब आई एम श्योर हमें
0: जी
1: आपसे बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिलेंगे।

0: चलिए, है ना, फिर हम इस
1: जी
0: बातचीत को जारी रखते हैं। और अच्छा, आप ये बताइए कि बैंकिंग क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या शुरू से आपने सोचा था बैंकिंग में आएंगे, या एक
1: नहीं,
0: इत्तफाकन आप बैंक की तरफ आ गए? कैसा रहा बैंकिंग का सफर आपका?
1: मैंने कभी भी बैंकिंग में आने की सोचा नहीं था। हालांकि मैं कॉमर्स से ही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा कॉमर्स से ही किया था,
0: जी
1: लेकिन मैंने बैंक में आने की कभी सोचा नहीं था। लेकिन नौकरी की तलाश में था, कई जगह टेस्ट इंटरव्यू दिए, बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: ओके
1: सेवेंटी
0: ओके
1: सेवन में मैंने ज्वाइन किया था बैंक को।
0: अच्छा, 77 की ज्वाइनिंग है आपकी, वेरी
1: जी
0: गुड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि जैसे बैंक ऑफ राजस्थान में आप रहे, जो बाद में ऑब्वियसली जाके आईसीआईसी बैंक में मर्ज हो गया, और थोड़ी यूनियन में भी आप सक्रिय रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह भी रहे हैं, तो ये किस तरह का, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम था आपको, कैसा रहा इसमें? आप बहुत इन्वॉल्व थे, या तो मैनेजमेंट से
1: मैं
0: कभी
1: बहुत
0: आपकी एक्टिविटी, मैनेजमेंट से आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता था यूनियन की वजह से?
1: एक बात ये थी कि देखिए, टकराव तो निश्चित रूप से अगर आप यूनियन लीडर हैं तो मैनेजमेंट से होना ही है।
0: जी
1: लेकिन फिर भी हमारी साख ये थी कि हम जिस चीज के लिए हमने कोई वचन दे दिया, हाँ कर दिया, तो हम उससे कभी उसको बिट्रे नहीं करते। ये एक हमने ईमानदारी से वो बात करी। तो मैनेजमेंट को भी हमसे बात करने में ये होता था कि जो इन्होंने कह दिया वो होके रहेगा।
0: ओके
1: ये एक हमारे साथ थी। और कभी हमने जैसे जो इसमें होता है राजनीतिक करियर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जैसा होता है, ऐसा हमारा कभी भी माहौल हमने होने नहीं दिया। हालांकि सब जगह राजनीति होती है, पर हमने इस तरह
0: हाँ
1: का, हमारे जो विद इन यूनियन, यूनियन के अंदर भी कुछ राइवल्स होते हैं,
0: हाँ
1: उन तक के
0: नेचुरली
1: भी हमने कभी किसी का भी काम आया हमने उसको करा के दिया है। कभी ये नहीं कि भाई ये हमारे पक्ष का आदमी नहीं है या ये हमारे पक्ष का है, ऐसा हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया।
0: वेरी गुड।
1: ये एक हमारी
0: और
1: साख रही है आखिर तक। जब तक भी मर्जर हुआ तब तक भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, और करीब 40 की एज में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया था स्टेट का। और राजस्थान स्टेट का मतलब ये है कि बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान बेस्ड की बैंक
0: हाँ, बैंक
1: थी,
0: था
1: और उसमें बाहर तो मुश्किल से 50-60 ब्रांचेज होती थी। तकरीबन
0: राइट राइट
1: 275 ब्रांच हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर थी।
0: जी
1: वो सारा मेरे को देखना होता था, उनका सभी कर्मचारियों का, जो भी हित होते थे उनको साधने होते थे। बस ये मैनेजमेंट से तो मेरा कोर्डियल इसलिए रहा कि उनको ये विश्वास था कि अगर ये बात कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें दम है। मैं कभी झूठी बात नहीं कहूंगा या किसी को झूठा दिलासा नहीं। मेंबर्स को भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा और वो नहीं हुआ हो। अगर कह दिया तो इसका मतलब होना पक्का है।
0: और इसका मतलब है कि जब इस तरह की आप पर्सनैलिटी थे, तो आप अपने काम के प्रति भी समर्पित थे। मैनेजमेंट को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने काम से
1: जी
0: कोताही
1: हाँ
0: नहीं करते। बिल्कुल
1: जी हाँ, यही था। मैं 10 से 5 बिल्कुल मेरे साथी, बल्कि बड़े बड़े अफसर बन गए बाद में, तो वो यही कहते थे कि भाई आपकी वजह से हमारे तो ये, मैं कैश में हेड कैशियर रहा,
0: अच्छा अच्छा
1: तो वो कहते हैं कि आपकी वजह, आपने यार इतना काम ले लिया कि हमारे तो ये हाथ उंगलियां हैं जो है कांपने लगी।
0: चलिए चलिए,
1: इस तरह का रहा है। और मैनेजमेंट ने भी इस बात की सराहना की है कि मतलब जितना ये यूनियन में इन्वॉल्व है उतना ही अपने काम में भी
0: काम
1: इतना
0: के प्रति।
1: ही। जी हाँ,
0: तो आप ये बताइए, इतनी व्यस्त जीवन के बावजूद आप कैसे उस दौर में भी संगीत से आपका जुड़ाव रहा? क्या उस दौर को कैसे याद करते हैं आप? उस दौर में भी संगीत से थोड़ा बैंक में भी जुड़ाव था?
1: बैंक में भी जुड़ा था। मैं तो स्कूल में भी सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी भाग लिया। बैंक के
0: अच्छा
1: अंदर मैं एक, हमने क्लब बनाया हुआ था, उसमें प्रोग्राम करते थे सालाना,
0: अच्छा
1: तो उसमें मैं खाली गाया नहीं लेकिन डायरेक्शन रहता था मेरा सारा उसमें।
0: अच्छा अच्छा ओके। तो चलिए फिर इस पुराने दौर को जो आपने बैंक ऑफ राजस्थान का याद किया है, हमें भी याद है राजस्थान का ये प्रमुख बैंक था, तो उस दौर को याद करते हुए कोई अच्छा सा ऐसा नॉस्टैल्जिक गाना सुनाइए, जरा मजा आए हमारे को भी उस दौर को, हम लोग भी याद करें अपने पुराने दौर को बैठ के, हमारे श्रोता भी याद करें, कुछ बढ़िया सा गाना सुनाइए।
1: तलत महमूद का गाना सुनाता हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, तलत महमूद तो मेरे फेवरेट है, स्वागत है स्वागत है।

0: समझ के क्यों मुझे।
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपने तलत महमूद की याद दिला दी। एक जमाने में तो तलत महमूद गजल के बादशाह हुआ करते थे हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: बढ़िया, बहुत। तो एक दौर था, इनका ही दौर था। बाद में फिर ये सब आते गए एक के बाद एक में।

0: चलिए फिर हम बातचीत करते हैं। जैसे आप 1988 में आप स्वर्गीय श्री दिनेश डांगी जी से आपके संगीत सीखने की शुरुआत कैसे हुई, वो संगीत से आपने शुरुआत कैसे की सीखने
1: वो
0: की?
1: मुझे एक शौक था कि मैं चूंकि गाता तो था, हारमोनियम भी बजाता था, लेकिन मेरी इच्छा थी क्लासिकल सीखने की। तो इस वजह से मैंने उनसे संपर्क करके और उनसे मैंने ये सीखा। और ये उस समय मैं यूनियन में बहुत बिजी हुआ करता था और मेरे दिन रात का कोई पता नहीं होता था। कई बार पूरी पूरी रात भी जगना था, कई बार 1 बजे 2 बजे तक भी सोते थे। एम्प्लॉयज के वो बनाने होते थे, कभी डिफेंस के कागजात बनाने होते थे, तो उस वजह से काफी टाइम देना पड़ता था। लेकिन फिर भी मेरे को उन्होंने सुबह कह रखा था 7 बजे आप हारमोनियम रख के अगरबत्ती लगा के और शुरू कर देंगे। वो सात
0: अच्छा,
1: सवा 7 बजे आते थे और वो इतने दिन में कोटा में अवेलेबल होता था। और जब मैं बाहर होता था तो मेरा ये था कि जैसे ट्रेन में भी अगर मैं हूँ तो अपने बर्थ पे जब सब लोग बातचीत करना बंद कर देते, सोने का टाइम हो गया, तो अपने ऊपर ही अपना प्रैक्टिस करता था। ऊपर हमेशा ऊपर की बर्थ में रहता था ताकि किसी
0: ओके,
1: को कोई जी
0: हाँ डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ
1: हाँ तो जुनून तो था शुरू से ही।
0: तो अब जब ये आपने डांगी जी ने आपको सिखाना शुरू किया तो कौन कौन से राग उन्होंने सिखाए, या शास्त्री इनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है खास तौर से शास्त्रीय संगीत की?
1: उन्होंने यूं मेरे को यमन सिखाया, राग
0: ओके,
1: जौनपुरी सिखाया
0: अच्छा
1: और एक तो राग काफी सिखाया, एक वृंदावनी सारंग करके राग वो सिखाई, राग
0: अच्छा
1: भैरव सिखाई। हाँ ये मेरे को सिखाया था उन्होंने उस समय। एक बागेश्वरी राग, बागेश्वरी भी काफी पॉपुलर है और फिल्मी गाने तो बहुत इस पर बने हुए, ये
0: ओके
1: सिखाया।
0: ओके। तो अब इतने सालों के बाद में, फिर गैप के बाद में 2023 में आपने दोबारा संगीत सीखने की प्रेरणा, ये दोबारा कैसे आपको जैसे शौक जागा, तो फिर ये किसी ने याद दिलाया आपको या कोई
1: नहीं,
0: ट्रिगर था जिस
1: दरअसल
0: या?
1: हुआ हुआ ही हो कि जब मैं रिटायर हो गया, मैंने 13 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। मेरा
0: ओके
1: जून
0: ओके
1: था 16th में, लेकिन मैंने
0: ओके
1: 13 में रिटायरमेंट ले लिया था।
0: अच्छा
1: और उसके बाद शायद कुछ कारण ये भी रहे होंगे कि मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहा हूँ। अब वो जो लोनलीनेस थी, जो अकेलापन था, वो शायद ऐसा घर कर गया कि मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था।
0: ओहो अच्छा।
1: हाँ, फिर उसके बाद मैं काफी इलाज भी चला, लेकिन वो दूरी मेरी उसी से, डिप्रेशन उसी से दूर हुआ कि मैंने संगीत शुरू किया। दूसरे मैंने 65 साल की उम्र में उर्दू सीखना शुरू किया
0: उर्दू
1: और दो
0: सीखना
1: साल
0: शुरू
1: जी
0: किया? अरे वाह,
1: हाँ
0: वाह अच्छा, वेरी गुड।
1: तो 2 साल मैंने उर्दू की शिक्षा ली, क्योंकि
0: ओके
1: इसका बहुत ज्यादा फिर पुराने फिल्मी गानों में उर्दू का
0: ओके
1: बहुत ज्यादा इस्तेमाल है।
0: जी जी
1: तो अगर
0: बिल्कुल
1: हमको, अब लोग कहते हैं फील आना चाहिए गाने में, वो
0: जी
1: फील हमको जब उस वर्ड का मायने ही नहीं पता तो
0: जी
1: फील
0: बिल्कुल
1: आएगा कहाँ से। तो मुझे बहुत कंपलसरी लगा कि ये तो सीखना जरूरी है। हालांकि उर्दू का मुझे बचपन से भी शौक था और पहली जमात जितना तो मैंने पढ़ा था, पहले भी अलिफ बे वगैरह पहले भी पढ़े बचपन में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सीख पाए थे। 65 साल की उम्र में फिर मैंने ट्यूशन लगाई और 2 साल तक मैंने उसकी शिक्षा ली। अब मेरे को मतलब लिखने में, पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं
0: अरे वाह,
1: है। जी
0: उर्दू उर्दू आप पढ़ लेते हो?
1: हाँ,
0: वंडरफुल, इट्स
1: पढ़ भी
0: ग्रेट,
1: लेता हूँ,
0: आशा।
1: लिख भी लेता हूँ।
0: हाँ, कायस्थ परिवारों में उर्दू तो काफी आती है, जैसे हम
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: लोगों को भी, हमारे परिवार में
1: हाँ
0: फारसी वगैरह भी आती थी, नाना दादा को, लेकिन हम लोगों को वैसे बोलने के शब्द आते हैं क्योंकि शेरो शायरी का
1: हाँ
0: जिनको शौक होता है उनको उर्दू आ जाती है।
1: वो बिल्कुल
0: तो
1: वो
0: हाँ, लेकिन आपने लिपि सीख ली है और आप लिख भी
1: हाँ
0: लेते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मेहनत का काम है
1: बिल्कुल, मेहनत
0: भाई।
1: का तो है। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जो भी मेरे साथी संगे संगीत के भी, मैं कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कभी भी
0: बात।
1: अपने
0: और
1: को ये नहीं समझे कि हमें तो सब आता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता अपने को, 10% भी नहीं आता, बहुत कुछ है सीखने को। और हमेशा स्टूडेंट बन के रहे, विद्यार्थी बन के रहो, तो सीखने को बहुत पड़ा है। बहुत सीख सकते।
0: नहीं नहीं और ये बात आपने बहुत जोरदार कही कि जो अगर गाने के लफ्ज का मतलब आपको नहीं पता है तो कभी आपको वो फील नहीं आएगी, और खास तौर से गजलों की अदायगी में तो उर्दू काफी होती है।
1: और फिल्मी गानों में जो पुराने गाने फिल्मी है ना, उनमें भी उर्दू का इतना इस्तेमाल है कि बहुत सारे मेरे साथ में जो सीखने जाते थे, हम गाने वाने जब गाते थे फिल्मी कई बार आपस में, तो वो उसका मतलब नहीं समझते थे, गाते थे लेकिन मतलब नहीं समझते थे। हम गाते थे तो बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन मैंने कहा आपके समझ में क्या आया, वो समझ नहीं पाते थे, फिर उनको मतलब पर निकाल के बताते थे किसका ये मतलब है। जैसे इसमें एक वो मैंने गाना वहां पे LBS में हमारा प्रोग्राम हुआ था, एक LBS कॉलेज कोटा में, तो उसमें वो था बहारों ने मेरा चमन लूट कर
0: दे दिया।
1: तो उसमें एक लाइन थी, मुझे क्या पता था कभी इश्क में बाकी वो तो कासिद बनाते नहीं।
0: कासिद, बिल्कुल सही बात है। ये देवर फिल्म का है जहां तक मुझे ध्यान है।
1: देवर का है, बिल्कुल देवर का ही
0: मेरे देवर फिल्म का गाना है, धर्मेंद्र वाली पिक्चर थी।
1: धर्मेंद्र की पिक्चर। तो अब मैंने लोगों को पूछा भाई ये रकीबों को कासिद बनाते नहीं इसका मतलब क्या है, तो लोगों को पता नहीं, गाना बहुत अच्छा है, बस गाना अच्छा है, फिर उनका मतलब समझ आए।
0: लोगों को कासिद का तो मतलब ही नहीं पता होगा कि मैसेंजर होता है उसका मतलब, वो उनको पता ही नहीं।
1: मैसेंजर होता है और रकीब मतलब कॉम्पिटिटर,
0: रकीब राइवल, राइवल राइवल
1: राइवल
0: प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी
1: प्रतिद्वंदी। हाँ जी,
0: तो इश्क में वो और उसकी पूरी पिक्चर की थीम ही ये थी देवर की। चलिए तो मजा आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात रही अपनी। और मैं आपको शायद गजल के आप भी शौकीन हैं, मैं भी शौकीन हूँ, तो ये जगजीत के आने के बाद थोड़ी गजलों की भाषा सहज हुई है, सिंपल हुई है, लेकिन उससे पहले जितनी गजलें थी, भले बेगम अख्तर हो, तलत महमूद हो, तो उर्दू बड़ी मतलब गाड़ी होती थी, गाड़ी होती थी तो। लेकिन चलिए, तो आपकी ये जो महेश मुसाफिर म्यूजिक एकेडमी जो आपकी शुरू हुई, इससे कैसे जुड़े आप, इससे क्या हुआ?
1: ये इन्होंने दिल्ली से शिफ्ट होके कोटा आए थे ये कोरोना के दौरान, वहां पे क्योंकि उनकी लाइव क्लासेज होती थी तो लोग वहां पे गए, जाना बंद कर दिया लोगों ने लॉकडाउन के वजह से। और किराया दिल्ली में चूंकि बहुत महंगे, तो 1-1.5 लाख रुपए तो उनका किराया जाता था इंस्टीट्यूट का। और वो रहने वाले भी इधर रामगंज मंडी साइड के थे, तो उनके फादर ने कहा कि भाई तुम कोटा शिफ्ट हो जाओ, कोटा सेंटर भी है, बड़ा है ना, रामगंज मंडी से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोटा बड़ा सेंटर है तो वहां पर तुम्हारा ठीक बैठ जाएगा, और किराए वराये भी बहुत इतने अधिक नहीं है जितने मेट्रो में। तो उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाला ही था, तो उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा था उसमें इनवाइट किया था उन्होंने, तो वहाँ गाने गए थे हम, तो बस वहां से उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा मैं इस तरह से ये चालू कर रहा हूँ, तो मैं क्लासिकल का मुझे शौक था इसलिए मैंने दोपहर ज्वाइन कर लिया।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद ही मेरा ये सारा जो डिप्रेशन का जो सीन था वो सारा उसी के बाद खत्म हुआ।
0: ओके ओके ओके, जब आप इससे जुड़ गए। तो चलिए फिर उसी दौर को याद करते हैं, कोई अच्छा सा गीत या गजल जो भी आपके पसंद हो सुनाइए, फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।
1: कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया आँख न जाने दिल पहचाने,

0: प्यारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ये गाना मेरे नाती को बहुत पसंद है।
1: वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये तो क्लासिकल शायद मन्ना डे जी का गाना।
0: हाँ मन्ना डे का है,
1: मन्ना डे जी का गाना बहुत बढ़िया। हाँ नहीं थोड़ा सा मुझे तो ये तो पता है कि थोड़ा सा म्यूजिक के बिना ऐसे गाना थोड़ा सा

0: कैसा अनुभव था आपका जब पहली बार आपने स्टेज शो में भाग लिया?
1: देखिए, वैसे तो मैं स्कूल टाइम में भी मैंने स्टेज पे गाया हुआ है,
0: जी,
1: और उसके बाद जो यहाँ पे स्टेज शो किया हमने तो स्क्वायर 36 में हमने पहला शो किया था।
0: अच्छा,
1: वहां पर जो गाने गाए थे तो यही था जो आपको अभी

0: नहीं, बहुत सही बात है। मेरे को भी याद आ रहा है, ये बहुत ही पुरसुकून गाना है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, वी शांताराम की किसी पिक्चर का है मेरे ख्याल में,
1: हाँ,
0: मुझे
1: खैर वी
0: लगता
1: शांताराम की फिल्म का था और ये हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी शांताराम की पिक्चरों में संध्या एक हीरोइन हुआ करती थी, वो बहुत आती थी मुझे यार। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब रिटायरमेंट के बाद फिर से कितना संगीत से जुड़ गए हैं, तो आपको नेचुरली बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अब अपने जीवन को। तो आप क्या रेगुलरली प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं या आप प्रोग्राम
1: मैं
0: में
1: जाता रहता
0: पार्टिसिपेट?
1: हूँ। मैंने एक ग्रुप और बनाया हुआ है जिसमें वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का ग्रुप है, उसमें
0: अच्छा
1: गाना विद इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे
0: अच्छा
1: अपने अपने लाते हैं, सब अपने अपने जिसके पास गिटार है, पैड है, जो भी है। अच्छा, मेरे पास बहुत अच्छे तबलिस्ट भी हैं, और उनके
0: अच्छा
1: साथ भी मैंने गाए हैं, उनके संगत
0: ओके
1: लेकर। और अभी मैं हारमोनियम लोगों को सिखाता भी हूँ, कई
0: अच्छा
1: लोगों को
0: अच्छा
1: सिखाया जी। और बस
0: बहुत
1: हम लोग पीस की पूछते, मैंने बस यही मत पूछा, पीस नहीं है बस, आपको
0: नहीं,
1: पसंद
0: सही
1: आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई
0: नहीं,
1: जितना ज्ञान जो भी है थोड़ा बहुत, वो अगर बांटने में क्या दिक्कत।
0: और संगीत का ज्ञान बांटना तो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है साहब, बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, तो अंत में कोई संगीत प्रेमियों के लिए कोई आपका खास संदेश क्या कहना चाहेंगे जो आप
1: मैं
0: सर?
1: तो संगीत प्रेमियों से सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो मैं कुछ महसूस करता हूँ, कि हमेशा कभी भी मतलब हमेशा आप तो स्टूडेंट बन के रहिए, विद्यार्थी बन के। तो आप जित मतलब कोई इसकी सीमा नहीं है, संगीत की कोई सीमा नहीं है। कोई भी आदमी अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकता, कितने ही बड़े स्टार हो, कितने बड़े अच्छे गायक हो, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं है। बहुत
0: जी
1: कुछ है सीखने को, अथाह सागर है, तो अथाह सागर है। तो हमेशा विद्यार्थी बन के रहें और अच्छा सीखने की कोशिश करें, ये कहना है।
0: चलिए बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, ये थी हमारी विशेष बातचीत अरविंद कुमार जी सक्सेना के साथ। आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि सच्चा जुनून कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तताएं और जिम्मेदारियां क्यों ना हो, यदि मन में कला और संगीत के प्रति प्रेम हो तो वह किसी न किसी रूप में फिर से जीवन में लौट आता है। अरविंद जी, हम आपके उज्जवल संगीत सफर, स्वस्थ सुखद जीवन की कामना करते हैं, और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत
0: तो
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम, मैं हूं आपका मेजबान आलोक कुमार, आपसे अनुमति चाहता हूं, नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो, हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

साल 2013 में उन्होंने लॉ कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थी लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थी। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हट

छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। 4. दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है, लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। 5. अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए, इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती, ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास,
हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। What?

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा, फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं, उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी, और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर ना करते हुए भी किसी सफर में रहा। वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, दिल तो मेरा तेरी ही डगर में रहा। तू ढूंढता था जिसे जाके बुर्जे बाबुल में, वो शख्स तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा। हजारों नग थे उस जौहरी की झोली में, हजारों नग थे उस जौहरी की झोली में, उसे कुछ भी ना मिला जो अगर मगर में रहा। नमस्कार, आदाब, गुफ्तगू के रसिको 90.8 FM रेडियो एसएन और रेडियो टांडिया भील पर आपके पसंदीदा और बेहद अजीज प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, जिंदगी में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी कहानी सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखी जाती, बल्कि उनके हौसलों और सुरों में महसूस की जाती है। आज की महफिल एक ऐसी ही बेहद खास, नायाब और जिंदा दिल फनकारा के नाम है, जिन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े कठिन इम्तहानों को मुस्कुरा कर पार किया है। वो ना सिर्फ संगीत की दुनिया की एक अजीम हस्ती है, बल्कि अब हमारी रेडियो एसएन फैमिली का भी एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। तो चलिए, बिना एक पल भी गवाए

0: हमारे महफिल में खास इस्तकबाल करते हैं हमारी आज की मेहमान मीना अय्यर जी का। मीना जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है, बहुत बहुत खुशामदी।
1: खुशामदीद। हमारी आवाज को सुनने वाले श्रोताओं को हमारा आदाब, प्यार भरा नमस्कार। कभी सोचा नहीं था कि गजलों का भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा।
0: बेशतर जब हम नहीं कुछ सोचते और वो जब हो जाता है तो उसका तो मजा कुछ और ही होता है, है ना मीना जी?
1: जी
0: तो
1: जी।
0: हमारी बातचीत सिर्फ एक दो दोस्तों के बीच की बातचीत है, तो आइए हम अपने दोस्तों के साथ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं अपने उन शुरुआती दिनों के बारे में जहाँ आपका जन्म हुआ और जहाँ आपका बचपन बीता। वो कौन सी खूबसूरत जगह थी जहाँ आप जैसी खूबसूरत सी मीना अय्यर पैदा हुई?
1: हाँ, हम पैदा हुए थे तमिलनाडु के एक गांव में जिसका नाम है कल्लीडई कुरिची। बड़ा कठिन नाम है, जो कि तिरुनलवेली
0: की तरह ही।
1: जो कि तिरुनलवेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ की खूबसूरती ये है कि सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला से घिरा हुआ है ये गांव, और वहाँ ताम्रवर्णी नदी बहती है।
0: ताम्रवर्णी नदी, मतलब
1: नदी का नाम ताम्रवर्णी है।
0: ताम्र तो तांबे को कहते हैं ना?
1: जी, उसका नाम ताम्रवर्णी है।
0: उस पानी में तांबा तांबा है बहुत?
1: ना ना, ऐसे कुछ नहीं, जैसे गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, वैसे ताम्रवर्णी है। हाँ,
0: ताम्रवर्णी।
1: चंद पैदाइश के चंद महीने बाद हम लोग मुंबई आ गए। तब बंबई हुआ करता था,
0: जी
1: वहां 6-8 महीने रहे। फिर हमारे पिताजी की पोस्टिंग बंबई से अहमदाबाद गुजरात में हो गई, तो हाँ, तो भी शिफ्टेड टू अहमदाबाद। फिर वहाँ स्कूल की पूरी पढ़ाई वहीं की, और साथ साथ खूब सारी शरारतें भी की।
0: मतलब आप गुजराती में शरारतें करना सीखी?
1: हाँ, और क्या।
0: तमिलनाडु से सीधी लैंड कर गई आप गुजरात में।
1: हाँ, बताइए।
0: जिंदगी इसी का नाम है। फिर क्या हुआ?
1: फिर स्कूल में हर चीज का, हर तरह की गेम्स मैंने खेली हैं। आप गिल्ली डंडा बोलिए, या गुलेर बोलिए, या मार्बल बोलिए, कुछ भी बोलिए, पेड़ चढ़ना बोलिए, वो तक भी किया मैं।
0: मैंने भी किया है और धर्म से गिरी थी।
1: हाँ, बहुत चोटें लगती थी मेरे को बार बार। और उस जमाने में पता है, चोट लगा के घर आओ तो पहले मार पड़ती थी, उसके बाद उसका जो भी होना था होता था।
0: मार पे और मार पड़ती थी। हाँ। वैसे हमारी माएं भी कितनी कठोर दिल होती थी ना।
1: हाँ।
0: वाकई मीना जी, उन यादों की मिठास आपकी बातों में साफ झलकती है। अब मीना जी ये बताइए, जिंदगी में अक्सर हम जो सोचते हैं रास्ते उससे बिल्कुल अलग अलग निकल आते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि शुरुआत में आपका सपना कुछ और बनने का था लेकिन मंजिल आपको कहीं और ले गई?
1: हाँ, लगभग ऐसा ही कुछ हुआ। चूंकि मेरे दादाजी आर्मी में डॉक्टर थे, तो बचपन से मेरा ये सपना मैंने पाल रखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है। उतनी मेहनत भी की और अच्छे नंबर भी मिले, लेकिन उस दौर में अर्ली 70s में गुजरात यूनिवर्सिटी की पहचान इतनी मशहूर नहीं थी। और ऐसे में मेरी मासी यहाँ मुंबई में रहती थी, जिनके कोई बच्चा नहीं था, और वे हमेशा मुझे न्योता देती थी कि मेरे पास आके रहो बेटा।
0: अच्छा,
1: बस मैंने तय कर लिया कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं बंबई शिफ्ट हो जाऊं। फिर मैं हो गई पापा से परमिशन लेके।
0: अच्छा,
1: फिर मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया। तो जनाब, सब अच्छा था, मगर डोमिसाइल ना होने की वजह से हमारी अर्जी को जो है ना मंजूर कर दिया उन्होंने। मेरा तो दिल ही टूट गया।
0: मेरा तो सुन के ही टूट गया।
1: फिर जैसे तैसे मन को ना दृढ़ बनाया कि नहीं ऐसे हार नहीं मानते, और भी रास्ते हैं। तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, रसायन शास्त्र, मुझे बहुत ही मेरा प्रिय विषय था।
0: क्या
1: तो उसे
0: खतरनाक विषय
1: लेकर
0: था।
1: उसे लेकर मैंने जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, BSc।
0: वाह,
1: हाँ,
0: बहुत
1: मैंने रुख
0: सुंदर,
1: बदल दी जिंदगी
0: वाकई आपने कहा तो 360 डिग्री टर्न हो गया ना, कहाँ आप डॉक्टर बन रही थी और
1: हाँ
0: अब आप कहाँ पे केमिस्ट्री
1: जी,
0: के साथ बीएससी कर रही हैं, तो साइंस तो आपके साथ थी ही आखिर।
1: हाँ।
0: तो मीना जी, अब आप कौन सी गजल सुना रही हैं हमारे सुनने वालों को?
1: उस उम्र की बात करें तो जहाँ लव लेटर्स लिखने में हिचकिचाते रहते हैं ना हम लोग,
0: हाँ
1: कोई पसंद आ जाता है फिर पता नहीं लगता
0: हाँ
1: कि कैसे बताएं और चिट्ठी लिखने बैठे तो और मुश्किल हो जाता है काम। तो
0: तौबा।
1: वैसे ही एक गजल है जगजीत साहब की, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वही सुनते हैं।
0: वैसे आपस की बात है, आप बता सकती हैं आपने लिखा था क्या?
1: नहीं,
0: गुजरे दौर की बात है, अगर हम इकरार कर भी लेंगे तो कौन सी आफत आ
1: हाँ
0: जाएगी, लिखा था जी, कर लो जो
1: नहीं
0: करना
1: नहीं लिखा नहीं था, लेकिन एक सजेस्टिव ग्रीटिंग कार्ड जरूर भेजा था किसी
0: है।
1: को।
0: चलिए ठीक है, कुछ तो किया था ना, कोरे कोरे तो नहीं निकल आए ना, काम
1: नहीं,
0: गंगा जी में थोड़ा डुबकी लगा ही लिए ना, पैर तो गीले कर ही लिए ना, डुबकी नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों, मीना जी की गाई हुई ये बड़ी खूबसूरत सी गजल सुनते हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। आप भी सुनिए।

0: वाह, सुना आपने दोस्तों, मीना जी की आवाज में कैसी मीठी दर्दनाक सोजदार गजल, मुझे तो बहुत पसंद आई। थैंक यू मीना जी, इतना सुंदर गाने के लिए। अब आप ये
1: शुक्रिया।
0: बताइए कि आपके कॉलेज के दिनों की बहुत ही खास वाकया आपने मुझे पहले बताया था, जिसने आपके दिल में गजलों और शायरी की एक नई अलख जगा दी। तो ये बताओ मीना, कि वो कौन सी यादगार शाम थी जिसमें ऐसा कुछ हुआ? हमारे दोस्तों को भी तो बताइए।
1: जी, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक दिन दोस्तों ने कहा, शायद 1977 साल था, 77,
0: ओके।
1: उन्होंने कहा कि मेहदी हसन आए हैं और इधर ही पास वाले ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट हो रहा है, हम सब जा रहे हैं, तुम भी चलो।
0: वो
1: मैंने कहा, अरे यार, मेरे को ये गजल वजल सब समझ नहीं आता, मैं नहीं आती। बोले, नहीं, फिर पछताओगी, आना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा, अरे फिर घर में भी बोलना पड़ेगा, बड़ा टेंशन है। तो बोले, नहीं, फोन करके बता दो ना, क्या दिक्कत है, हम छोड़ आएंगे तुमको रात में। तो मैंने फोन करके बोल दिया कि भाई, एक्स्ट्रा क्लास है, ये तो नहीं बोल सकती गजल सुनने जा रही हो। तो क्लास का बहाना करके मैं चली गई उनके साथ सुनने। और माशाल्लाह, मेहदी हसन साहब ने जो गाना शुरू किया, मैं तो पागल ही हो गई। क्या अंदाज था और क्या चुनिंदा अल्फाज थे। ओ, मैं तो साहब गजलों की दीवानी हो गई उसके बाद,
0: एक ही शाम में
1: एक ही शाम में
0: लूट लिया
1: लूट
0: दिल आपका मेहदी हसन
1: गए।
0: साहब। हाय, उस शाम का जादू आज भी आपके सुरों में जिंदा है। तो चलिए
1: हाँ, मुझे
0: दोस्तों। हाँ बोलिए, कुछ और कहना चाहती
1: उसी उसी उसी शाम को उन्होंने वो गाई थी गजल जो मैं
0: हैं?
1: अभी आपसे बोलने वाली थी कि प्ले करें, मुझे आज तक जबानी याद है वो।
0: अरे वाह, तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए डूब जाते हैं मीना जी की आवाज की इस मखमली मिजाज में, और सुनते हैं मेहदी हसन साहब की ये पुरअसरार गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए।

0: वाह मीना जी, आपकी गायकी की मैं क्या तारीफ करूं। जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। कितने जबरदस्त नुआंसेस को आपने उसी तरीके से बरकरार रखते हुए गाया। बहुत मजा आया, बहुत मजा
1: शुक्रिया।
0: आया। जैसा कि आपने बताया था कि साल 1981 में आपकी जिंदगी में संगीत का वो सबसे बड़ा दरवाजा खुला, यानी कि HMV की दुनिया। वो नौकरी आपको कैसे मिली और वहां आपकी पहली ही रिकॉर्डिंग का क्या तजुर्बा था?
1: हाँ, देखते ही देखते पढ़ाई खत्म हो गई और पढ़ने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। ऐसे
0: अच्छा।
1: में अखबार में एक इश्तेहार देखा कि HMV के रिकॉर्डिंग सेक्शन में असिस्टेंट चाहिए, और नेकी और पूछ पूछ हमने भी अर्जी दे दी, और मानेंगे नहीं 300 लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से दो चुने गए, जिनमें एक मैं थी। और
0: अच्छा,
1: मुझे,
0: 300 लोगों में।
1: हाँ जी, और मुझे चुनने की वजह ये थी कि मुझे काफी सारी हिंदुस्तानी भाषाएं आती थी, खास करके बंगाली। तो
0: अच्छा।
1: फरवरी के महीने में 1981 में मैंने ज्वाइन किया, दाखिल हुए उधर। पहले ही दिन तो मेरे एक अप्सरा के दर्शन हो गए जनाब, नाजिया हसन आई हुई थी।
0: ओ वाह, मोटी तो कोई बात ही नहीं कर रही आप। शुरू से ही नादिया हसन आ गई।
1: हाँ,
0: वाह,
1: उनका वो डिस्को दीवाने उसी दिन
0: ओ
1: रिलीज हुआ,
0: क्या क्रेज
1: तो
0: थी उस कैसेट की।
1: हाँ,
0: मैंने चार
1: तो
0: बार वो कैसेट खरीदी, आपको बताऊं,
1: क्या बात है।
0: सुन सुन के घस जाती थी।
1: हाँ, मैंने पूरे कमरे में उसके पोस्टर लगा रखे थे।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर महीना भर गुजरा और पहली रिकॉर्डिंग अटेंड करने का अवसर मुझे मिला। फिल्म लावारिस के गाने की रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियो में हो रही
0: यू
1: थी।
0: मीन अमिताभ बच्चन?
1: जी,
0: ओह माय
1: तो
0: गॉड।
1: उनका गाना मेरे अंगने में रिकॉर्ड होना था,
0: वाह,
1: और हमारा दफ्तर जो था वो एकदम डाउनटाउन में क्राउडेड प्लेस में था,
0: अच्छा।
1: तो वहां दिन दहाड़े तो उनको ला नहीं सकते, उनके लिए भी मुश्किल, हमारे लिए भी मुश्किल। फिर ये तय हुआ कि उनको आधी रात में ले आते हैं,
0: अच्छा।
1: तो ये झंझट नहीं पालने पड़ेंगे, आराम से आएंगे, गा के चले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, 11:15 को आए और चुपके से हम लोग अंदर ले गए उनको, उनकी रिकॉर्डिंग हुई। और फिर चंद महीनों, ये तो बड़ा पहले ही मेरे को, मेरा क्या बोलते हैं, जिनको एडमायर करती थी वही स्टार देखने को मिल गया, और उस
0: अरे
1: पर वो गार भी रहे थे, तो मैं तो एकदम क्या बोलते हैं, बल्ले बल्ले हो गई।
0: माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नायाब एक्सपीरियंस है। हाउ लकी यू हैव बीन।
1: फिर चंद महीनों में 1982 में मेरी शादी हो गई जनाब, श्रीमान रमेश अय्यर से।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मतलब
1: प्रमोशन हो गया मेरा लाइफ में।
0: अच्छा, वेरी नाइस। फिर
1: बस ऐसे ही,
0: तो
1: फिर रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग, एक आर्टिस्ट के
0: वाकई
1: बाद दूसरा आर्टिस्ट। हाँ
0: वाकई मीना जी, आपकी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज है मेरे ख्याल से तो। ये बताइए कि
1: जी।
0: HMV और फिर उसके बाद के सफर में अपने संगीत जगत के एक से बढ़कर एक दिग्गज और उस्तादों के साथ वक्त गुजारा। वक्त गुजारा आपने
1: जी
0: तो उन महान फनकारों के साथ काम करने का कोई ऐसा अनुभव या फिर किस्सा जो आपके दिल के सबसे करीब था?
1: सबसे ज्यादा काम मैंने मरहूम जगजीत सिंह जी के साथ किया है, उनके उनके हर एल्बम की प्रमोशन का काम मैंने किया है, और उनका अपनी एल्बम के लिए गजलें चुनने का काम जो होता था उसमें वो सबसे ज्यादा वक्त लेते थे। माने 300-400 शायरों में से कोई 8 सिलेक्ट करते थे वो, एक एल्बम के लिए।
2: अच्छा
1: बहुत हाँ, हर एक शायर की शायरी को पढ़ते थे और जो उनके दिल को छू जाती थी उसको वो सिलेक्ट कर लेते थे। हाँ, तो वो प्रोसेस बड़ा मजेदार होता था, वो
2: अच्छा
1: बीच बीच में मजाक भी होते थे या फिर किसी के लिए कंसर्न भी दिखाते थे। फिर 1984 में उन्होंने एक एल्बम बनाई एक्सटेसीज,
2: अच्छा
1: जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान मैं गर्भवती थी। आप मानोगे, जब मेरी बेटी पैदा हुई मार्च में, तो उन्होंने बड़ा सा गुलदस्ता भेजा था मेरे लिए। और उन दिनों में किसी कर्मचारी को यूं कलाकार से नवाजा जाना माने बहुत बहुत बड़ी बात थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं
1: और
2: समझ सकती
1: मैं,
2: हूँ।
1: हाँ, और मैं भी बड़ी खुश हो गई कि वाह, मतलब सो नाइस ऑफ देम टू इवन रिमेम्बर मी।
2: वाकई।
1: फिर हाँ, फिर 1995, 1995 में मैंने HMV छोड़कर एक पॉप म्यूजिक की कंपनी जो मेरे एक दोस्त ही चलाते थे वहां
2: अच्छा
1: ज्वाइन कर लिया, मैग्ना साउंड।
2: ओ वाह।
1: हाँ, और उधर पहले ही एल्बम वहां जो रिलीज हुई मेरे ज्वाइन होने के वक्त, वो थी अलीशा की मेड इन इंडिया, जो कि बहुत चली।
2: वाह, क्या बात है आपकी, तो प्यारी
1: और वो एक
2: बात
1: अलग ही
2: है।
1: दुनिया थी। क्योंकि यहाँ जब आर्टिस्ट आते थे तो पैर छूना, और उनके साथ बड़ी क्या बोलते हैं, मेरी ट्रेडिशनल वे में पेश आना, और उधर बिल्कुल अलग था। हाँ, माहौल ही अलग था। काम काम का प्रोसीजर वही था, लेकिन दुनिया अलग थी। और वहां मुझे दलेर मेहंदी साहब मिल गए और उनके सारे एल्बम्स को मैंने प्रमोट किया वहां पे।
2: वाह, वहां आप
1: बड़े अच्छे
2: दलेर
1: इंसान
2: मेहंदी
1: हैं
2: मिली, वाह
1: जी।
2: क्या
1: जी,
2: बात है।
1: वो आज भी मुझे उनका मतलब स्टैंडिंग इनविटेशन है कि आप दिल्ली आए तो मेरे घर आए।
2: क्या बात है,
1: बहुत
2: बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रहेगी आपकी तो। मतलब
1: हाँ, मजेदार लाइफ रही।
2: हर वक्त हमने तो, मैंने तो सिर्फ जगजीत सिंह को ही उनका एक कॉन्सर्ट अटेंड किया और वो भी
1: हाँ,
2: दूर से ही देखा है, और आप सबसे रूबरू हुई और सबको पास से मिली, कितनी
1: हाँ,
2: इंटरेस्टिंग लाइफ रही आपकी। तो
1: यस,
2: इतने सालों आपने ये सब कुछ, इतना अच्छा वक्त गुजारा, उन महान उस्तादों की सोहबत का असर आपकी गायकी पर भी साफ नजर आता है। तो आइए दोस्तों, मीना जी के सुरों से सजी एक और लाजवाब पेशकश, क्या बोल हैं इसके मीना जी, गुनगुना के बताओ ना जरा।
1: मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा।
2: वाह, आइए दोस्तों मीना जी की आवाज में अब ये गजल सुनते हैं।

0: वाकई मीरा जी, क्या गाती हैं आप! इतने सुंदर सुर हैं आपके, सुनता ही जाए कोई। तो ये
1: शुक्रिया।
0: बताइए अब कि इतने सालों तक पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के सुरों को आप रिकॉर्ड करती रही, तो साल 2000 में आपने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला किया और नौकरी छोड़ दी। क्या
1: जी
0: वजह थी आपके भीतर की? उस गायक ने उस वक्त आपको क्या आवाज दी थी?
1: हाँ, एक वजह तो यही थी कि अब खुद अपने गाने का अरमान पूरा करो और सुकून पाओ। और उसके लिए जगजीत सिंह ने ही मुझे ये एडवाइस दी थी कि आप
0: अच्छा,
1: बाकायदा गाना सीखिए क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया म्यूजिक क्लास। और दूसरी वजह ये थी कि मेरी बेटी 10वीं कक्षा में आ गई थी और मेरी सांस भी जो है बहुत ही कमजोर हो गई थी।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, वाह, सबको लगा कि इस मुकाम पे पहुंच के ऐसे छोड़ क्यों दी नौकरी। सबके मन में ये सवाल था। किसी ने मुझसे, कई लोगों ने पूछा भी कि ऐसे क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि इट्स बेटर टू लीव व्हेन पीपल आस्क व्हाई देन टू लीव व्हेन दे से व्हाई नॉट। मैंने बस चुप ही करा दिया सबको।
0: क्या बात है! बेटर टू लीव व्हेन समबडी आस्क व्हाई, नॉट व्हेन समबडी आस्क व्हाई नॉट। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही, बहुत सही बात बोली आपने। तो सुरों के लिए आपका वो समझौता आज हम सबके लिए भी एक तोहफा बन गया मीना जी। तो अब जब हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी, तो आपने अपनी सेहत से जुड़ी एक बेहद मुश्किल चुनौती का जिक्र किया था, जिसने साल 2020 में आपको घेर लिया। उस कठिन दौर में जब आप कैंसर जैसी इतनी बड़ी जंग लड़ रही थी, तब संगीत ने और आपके हौसले ने आपका साथ कैसे दिया?
1: मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद थे मेरे साथ और बेशक ईश्वर की कृपा भी थी। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। सुना है ये
0: जी, सुना
1: गाना?
0: है, सुना है।
1: हाँ, तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना श्रीमद् भागवतम पर थोड़ा विचार किया जाए।
0: ओ
1: तो पहले श्लोक से लेके 18,000वां श्लोक तक हमने पढ़े,
0: ओ
1: उसके साथ उसका अर्थ भी समझाया क्लास में, और आसानी से निकल आए कैंसर की जकड़ से।
0: ओफा
1: और उन दिनों में मैंने बहुत गाने गाए भी और सुने भी, और ये ऐप डिस्कवर किए ना, स्म्यूल और स्टार मेकर और पता
0: हाँ
1: नहीं क्या
0: हाँ
1: क्या, सब में बस गाती रहती थी क्योंकि कीमो की
0: ओहो
1: वजह से रात में नींद हराम हो गई थी मेरी, तो बस गाती रहती थी। और कोविड भी था तो कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो ऐसे में मेरे संगीत ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया।
0: वाकई वाकई सलाम है मीना जी आपके इस जज्बे को। आपने साबित कर दिया कि हौसला और सुर कभी मध्यम नहीं पड़ते। तो इस
1: जी
0: बादम हौसले को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं अब आपकी खूबसूरत आवाज में आपके जी से निकली हुई ये गजलें। कौन सी गजल है अब आपकी गाई हुई? मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, यही ना मीना जी?
1: जी
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं मीना जी की रूहानी आवाज में, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई ये खूबसूरत गजल आप भी सुनिए।

0: क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत अंदाजे बयां है मीना जी आपका, कितना खूबसूरत
1: शुक्रिया।
0: गाती हैं आप। तो आप बताइए मीना जी, उस मुश्किल दौर में आपने ना सिर्फ उस चुनौती को हराया बल्कि आदि शंकराचार्य जी की रचना पर एक खूबसूरत किताब भी लिख डाली। आज जब
1: जी
0: आप हमारे साथ रेडियो एसएन पर अपनी ये नई पारी खेल रही हैं, तो इस पूरे सफर को देखने के बाद आज हमारे सुनने वाले दोस्तों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
1: हमारे सुनने वालों से यही कहूंगी कि हर चुनौती का हंस के सामना करो और दिल के किसी भी सुझाव को नजरअंदाज मत करो। जहां तक हो सके खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। दैट्स हाउ आई लीड माई लाइफ।
0: वाकई मीना जी आपकी बातें सीधे रूह में उतर जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए और अपने इन अनमोल एहसासात को हमारे साथ बांटने के लिए।
1: मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और गजल का प्रोग्राम रचने के लिए आपका और समीर का तहे दिल से शुक्रिया। आदाब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, हमारी इस महफिल को इस तरह अपने सुरों से सजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आइए आज की इस मुकम्मल महफिल की आखिरी कड़ी में सुनते हैं मीना जी की आवाज में ढली ये रूहानी इल्तजा। मंजिल ना दे, फिराग ना दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे। मीना जी की आवाज में आप भी शौक फरमाएं।

बहुत खूबसूरत गाया मीना जी ने। तो दोस्तों, लफ्जों से सुरों तक और मुश्किलों से लेकर सुकून तक का ये सफरनामा आज हमारे दिलों में एक गहरा साया छोड़ गया। मीना अय्यर जी की बातों ने आज हमें सिखाया कि जिंदगी क्या है, कितने भी इम्तहान ले, अगर आपके पास सुरों के साथ, सुरों का साथ और अंदर का हौसला है, तो हर शाम खूबसूरत हो सकती है। मीना जी की खूबसूरत बातचीत और उनकी जादुई गायकी ने आज वाकई अल्फाज से एहसास तक के इस मंच को एक नया आयाम दिया है। दोस्तों, अब वक्त की सुइयां गवाही दे रही हैं कि आज की सुरीली महफिल को यही थामना होगा और आपसे रुख्सत लेनी होगी। कल ठीक इसी वक्त कुछ नए चेहरों, कुछ अनकही बातों और कुछ बेहद खास अल्फाज के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN एंड रेडियो टांटिया भील। अपनी रेडियो दोस्त हरती रॉय को दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिएगा, महकते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा। शपा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है। किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं, कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों

0: की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग क्या कहता है, वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा। बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे, क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बातें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बातें।
2: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
3: कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई

0: खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: ये हमारा पशुधन पर, पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
0: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है, वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
2: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे, ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके और अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो, या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहां मधुमक्खी को अपने स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ, क्योंकि गर्मी का समय है, तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है, तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है, तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं, उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के, उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बढ़े रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
0: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
2: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
0: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
2: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है अच्छा, पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोर कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, वो धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
0: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहां जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50 बाय 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भीम 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार। जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता है वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही हैं। किस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
2: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि, अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है।

0: जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है। इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता। साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्व पूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है। इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहां पर उसके पहलू जो है तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहां आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी, जो जैविक उद्यमी हैं, और किसानों की एक समस्या रहती थी कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो है वो खोल दी गई है। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं, पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको है, वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहां उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी, जो कि एक सफल उन्नत किसान है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है, जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहां पर हासिल की है, उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है, क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरेंद्र राणा जी, और वहीं ये पहुंचे, यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम यहां जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए, और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
2: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर दो सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है बहुत ही सफल योजना है और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब दो साल पहले ये योजना चालू की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम पे, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं और एक आपको मालूम है कि हमारा पीजीएस इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, pgsindia-ncuf.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
1: जी।
2: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है। दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना वो चालू किया गया है। और ये देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है, तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई जो आज तक नहीं हुआ है कि किसानों के पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
1: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया गया।
2: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं।
1: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्णचंद्रा ने हमें बताया काफी संख्या में जो किसान है वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
3: इसमें मुकुल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को
1: जी।
3: मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्णचंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए। उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
1: जी।
3: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
1: जी।
3: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
1: जी,
3: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
1: जी।
3: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
1: जी।
3: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
1: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है
3: जी।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के, हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनोज जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचा है?
4: 1.5 साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और कृष्णचंद्रा सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
1: जी।
4: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीजों को खरीदते थे
1: जी। बिल्कुल।
4: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफी भलाई हो सकता है
5: जी।
4: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
5: जी,
4: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना। जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहा है, बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना। तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
5: जी,
4: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
5: जी,
4: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
5: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर,
4: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
5: जी,
4: और इससे किसानों को काफी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तीन तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
5: जी,
4: तीन तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
5: जी,
4: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदो भोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
5: जी,
4: और कालोनिया। अब इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं। जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
5: जी,
4: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
5: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रही है।
4: मांग भी देखने को मिल रहा है
5: जी,
1: बिल्कुल बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्रा, आप भी इस बात से सहमत होंगे अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
2: देखिए कि हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में, जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ दो साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
5: बिल्कुल
2: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं
5: जी।
2: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है कि जितने भी हमारे ये रीजनल काउंसिल खोले गए हैं और भारत सरकार ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है
5: जी,
2: इसके लिए सबसे बड़ी मतलब हमारा जो विजन है हमारे कृषि मंत्री जी का है, श्री राधामोहन साहब ने, जो उन्हें फर्स्ट डे से उन्होंने कहा था कि किसान को मेन बेनिफिट मिलना चाहिए,
5: बिल्कुल
2: जो कि हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले कहा था। और उनका यह व्यू था कि आप कुछ भी करें लेकिन किसान के पास में बेनिफिट जाए। आज की डेट में हम बता सकते हैं जो जो भी इस स्कीम के साथ जुड़ा है, स्कीम ना होने के बाद भी जैसा मैंने बताया कि लोगों को प्रमाणीकरण मिल रहा है, जो भी किसान जुड़ रहे हैं अगर वो ऑर्गेनिक में है, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, तो उनको 10% मिनिमम मार्केट रेट से अधिक मिलता है
5: जी।
2: और अगर उनका जैविक पूरा उत्पाद है तो 30% तक उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैविक उत्पाद की आपने यहाँ बात कही और हम अक्सर देखते हैं बाजार का जब रुख करते हैं तो जैविक उत्पाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उपभोक्ता तक जब तक असली एक जैविक उत्पाद नहीं पहुंचेगा शायद मांग जो है उतनी ज्यादा निकलकर नहीं आएगी, कैसे पहचान हो सकती है?
2: हाँ, देखिए प्रमाणीकरण बताया आपको, प्रमाणीकरण जैसे आपके मनु जी बैठे हुए हैं ये प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं
5: जी,
2: ये प्रमाणीकरण के साथ साथ बाजारी भी कर रहे हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे उन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया, तो किसानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं,
1: सारी जानकारी
2: उस पर एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन, अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है है कि ये ऑर्गेनिक है और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं। तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है। तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है, जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रेजिडुअल टेस्टिंग करते हैं,
1: तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है, उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक हैं वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके?
4: देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए पीके भिवाई स्कीम में, पीजीएस का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किए, तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे
1: जी।
4: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की, किसी मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे
1: जी।
4: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था, पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी,
1: बिल्कुल,
4: उसमें क्या था कि 3 साल आपको जैविक पूरे खेती करनी होगी तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं
1: जी।
4: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद डर रहता उपज ना आ पाए,
4: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुकाव उनका नहीं होता था
1: जी।
4: लेकिन जब ये स्कीम आया, पीके वीवाई का स्कीम आया, जिसमें पीजीएस ग्रीन, जो सर अभी बोले हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का
1: जी,
4: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा, जहाँ रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
1: जी।
4: और चूंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदि है
1: जी,
4: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
1: जी,
4: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई, उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे, तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो, और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का, पहले साल का जो उत्पाद है, वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले 2 साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं, ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पर देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
1: जी,
4: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम, उससे हम लोग 10-15%।
1: बिल्कुल मनु जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है, वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
4: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस
1: जी,
4: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा, तो उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में
1: जी।
4: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अभी 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी,
4: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आगे भी जुड़ेगी, तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा, इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा, और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की, उसके किस तरीके परिणाम जो है अभी तक आपको मिले हैं?
3: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,
3: तो वहां से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था
1: जी,
3: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी,
3: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो
1: जी,
3: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो
1: जी।
3: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी,
3: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी,
3: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्यूर चाहिए
6: जी,
3: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना डीएपी पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपका वेस्ट

0: वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्यूर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहाँ उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम के साथ, झाबुआ की आवाज़।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: यहाँ पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारा जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्णचंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: नहीं, अब काफी हद तक इसमें डर कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है।
2: तो
4: कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी हैं, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है, तो ये सब उनके में जागरूकता है। अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है।
2: बिल्कुल, लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसे आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी,
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए
2: जी।
4: अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में, और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा। तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आएगी, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा, और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो ढूंढना शुरू हो गया है। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं, आप साइंटिफिक मेथड, जैसे राणा जी ने बताया कि ये डिकम्पोजर यूज करिए, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए।
2: बिल्कुल,
4: जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम कर रहे और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं। तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर 11 क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपकी जो इनकम है वो करीब 4 लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब 4 गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इस इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती है,
2: प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है
4: और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि कैसे कर रहे हैं। हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं कि कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चल रहे और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को बढ़ा
4: जी दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फार्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में उनसे अनुरोध किया गया
2: जी।
4: वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल शुरू एक नई शुरुआत जो है नई पहल ऐसे की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कोई बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खुली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणित जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फिर लाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने 3 सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही 3 डिमांड है, इसी 3 डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो ज्यादा डे टू डे में ज्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: तो अब इसकी लॉन्जिबिलिटी कितने
2: फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मांग सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी।
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 लीटर 2 केजी गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी,
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
2: जी,
6: और 7 दिन में गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है, और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
2: जी।
6: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
2: जी।
6: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
2: जी।
6: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
2: जी।
6: दूसरी चीज आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
2: जी
6: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से, और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
2: जी।
6: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है, और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
2: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णचंद्रा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इस तरह के जो उत्पादन का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
4: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली, इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती के अंदर इसमें इन्वॉल्व था 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
2: जी।
4: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, तब इसको डेवलप किया गया, डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया, ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि

0: अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए ये बनाया गया, तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के, राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना काम इन्होंने गांव गांव जाके किया है वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है। और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमें करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है, एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए, जैसे बरसाना में है, गौशाला है, वहां पर उन्होंने दिया तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया। तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
1: जी,
0: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है, सब हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर, लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
1: जी,
0: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा है, और किसान जुड़ते चले आ रहे हैं। और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं, अपने आप कर दो, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें तो उसके फायदे अनेक हैं, और एक बार जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: कि जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं, जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
4: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
3: जी,
4: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज्यादा से ज्यादा हो
3: जी,
4: तो वहां उनका थोड़ा सा बचत
3: जी।
4: दूसरा, जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
3: जी,
4: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
3: जी,
4: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम,
3: वो भी आय का जरिया मान,
4: एक आय का जरिया मान सकते हैं
3: जी।
4: अब जो किसान है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए
3: जी, बिल्कुल,
4: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
3: जी,
4: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए, स्टिकर लगाए, तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
3: जी।
4: तो बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा लागत
3: जी, लागत कम हो जाती,
4: लागत कम लगा उससे उनकी बचत हुई। दूसरा, उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ,
3: बिल्कुल।
4: तीसरा, जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
3: जी,
4: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल से, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
3: जी।
4: चौथा, जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए
3: जी,
4: उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट,
3: बिल्कुल।
4: तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
3: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
4: का आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
3: जी,
4: जहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
3: जी,
4: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक गाड़ी चली गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
3: जी,
4: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सके और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें, ट्रेन में या रोड में? तो अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
3: जी।
4: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचेगा
3: जो उत्पाद है वो खराब नहीं होगा।
4: खराब नहीं।
3: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, वो कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने है अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
4: देखिए उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
3: जी।
4: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहे हैं जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो
3: जी,
4: क्योंकि उन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं
3: बिल्कुल
4: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को भेजना है जो वो खेती कर रहे हैं
3: जी।
4: बस उसमें बेहतर इनपुट दे जैविक इनपुट
3: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्णचंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे जैसा कि यहाँ मनु जी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं प्रसंस्करण की इकाई है इसके जरिए उनको भी इकाई का जरिया मिल सकता है?
0: बिल्कुल मिल रहा है और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल इस तरह से आपके साउथ में जाए केरला है तमिलनाडु है वहां पर जो स्पाइसेस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है
3: जी।
0: तो ये जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास से दूसरे को भेजते हैं दूसरे का इनके पास आता है तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था अब ये इस साल से अभी नवंबर से इन्होंने चालू किया तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा स्पाइसेस वहां हो रहा है तो वहां से यहां आएगा तो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा तमिलनाडु भी दिखाई देगा नॉर्थ ईस्ट का भी दिखाई देगा तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे।
3: बिल्कुल
0: ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि दिखाई देगी
3: उपलब्धता हो सकेगी। साथ ही साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं उत्पाद आपने बताया डीकंपोजर की भी आपने बात की इससे क्या फायदे हुए लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में अगर एक किसान की हम बात करते हैं किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें।
1: आज की तारीख में मुकुल जी किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है
3: जी
1: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं तो इन चीजों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरी चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है
3: जी।
1: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है।
3: बिल्कुल।
1: दूसरी चीज किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है
3: जी,
1: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है और बल्कि और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है
3: जी। ये आपका निजी अनुभव है यानी?
1: मेरा अपना अनुभव है
3: जी।
1: दूसरे जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है और समाज को भी चाहिए जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा तो इससे अच्छा ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है
3: जी।
1: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है
3: जी।
1: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है
3: जी
1: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
3: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
1: जी। हाँ उसको कन्वर्ट कर देता है
3: जी।
1: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है, जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
3: जी।
1: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
3: जी।
1: तीसरे आपका जो काव डंग्स है दूसरा वेस्ट है उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
3: जी।
1: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो वह 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
3: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
0: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक को शुरू कर दिया
3: जी।
0: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं और उन्होंने इस पे ऊपर काम चालू हो गया। और जहाँ तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
3: जी।
0: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
3: जी।
0: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
3: जी,
0: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहे, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
3: जी।
0: आपके
3: योगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
0: दिखाएंगे या है
3: जी।
0: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी यही है कि ये सब चीजें आप एक बॉटल लेंगे फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000, 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाएगी कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा, और ये कहना मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3 गुने 4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं
3: जी।
0: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है स्ट्रेस में है, आपकी रेनफेड एरिया, तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
3: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
0: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपके है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली प्योर उत्पाद खाएं, 6 महीने बाद आप अपने बॉडी में चेंज देखेंगे
3: जी।
0: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही, ये सब इससे निवारण है।
3: बिल्कुल डॉक्टर चंद्र, जो किसान है वो तो आपने बताया कैसे जुड़ेंगे, लेकिन उपभोक्ता भी है,
0: उपभोक्ता के लिए भी, मतलब किसानों के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी जमीन को बचाना है तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है। अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहेंगे, जैसे मनु जी वगैरह भूल गए, इसमें थोड़ा सा एक काम ये लोग और भी कर रहे हैं कि किसानों के, इन्होंने दे रहा है कि जो भी किसान काम कर रहे हैं उनको आपका जो सीड है, सीड भी वो लोग वहां पर उत्पाद कर रहे हैं, आपस में सीड बांट रहे हैं, तो सीड उत्पादन भी वहां पर,
3: यानी बीज उत्पादन भी,
0: बीज उत्पादन मुनाफा शुरू हो रहा है। और जिसके पास जानवर नहीं है, तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे उद्योगीकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है,
3: पूरी कड़ी है। लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं, यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
0: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा यह है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है, और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है, पोर्टल पे जाइए, आपका पीजीएस इंडिया डैश आपका ncf.gov.in उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
3: इस पर सारी जानकारी जो है
0: सारी जानकारी है, और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
3: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें।

0: होगा और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
1: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।

गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

दोस्तों लीजिए, फिर से हाजिर हैं हम एक नए टैलेंट, एक नई प्रतिभा, एक नए सिंगर और एक नए म्यूजिशियन के साथ। आज जो हमारे प्रोग्राम में, आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनका नाम है डॉक्टर मीना। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर मीना से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे, बहुत बहुत आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर मीना के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है. यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम.
1: थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ. मैं आपको इस रेडियो प्रोग्राम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, और रेडियो झाबुआ के श्रोताओं को मैं सबसे पहला नमस्कार करना चाहूंगी. तो शुरू करते हैं.
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. हमने आपका गीत सुन भी लिया, लोगों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को पता भी चल गया कि किस तरह की इवनिंग, किस तरह की म्यूजिकल इवनिंग, किस तरह की आज शाम हमें संगीत सुनने को मिलने वाला है. शुरू करते हैं इस छोटे से सवाल से कि मैम आप कहाँ रहती हैं, उस जगह के बारे में हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताइए ना.
1: मैं पुणे की रहने वाली हूँ, और जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि पुणे तिथे काय उणे, मतलब पुणे में किसी चीज की कोई कमी नहीं है.
0: वाओ,
1: इट इज अ कल्चरल कैपिटल, वहाँ एजुकेशनल हब है, संतों की बस्ती है, शिवाजी राजे और पेशवे का इतिहास है. तो वहाँ पे हम मतलब शनिवार वाड़ा का नाम आपने सुना ही होगा अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी.
0: जी जी.
1: और ओशो आश्रम है, फिर वहाँ पे बाल गंधर्व रंग मंदिर है जहाँ पे म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं. और खाने पीने के तो पूछो ही मत, मतलब चितले की बाकरवड़ी से लेकर वैशाली की सेवपुरी, गार्डन का वड़ा पाव, गुडलक कैफे, बेडेकर मिसल पाव, यू नेम इट एंड इट्स देयर. कोरेगांव पार्क में नाइट लाइफ तो बहुत बढ़िया. और पुनेरी पाटे के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा, दुनिया भर में प्रसिद्ध होते हैं.
0: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग,
1: बहुत अच्छा.
0: मुझे जहां पर आपने सारे के सारे फूड जॉइंट्स के बारे में बताया और डिशेस के बारे में बताया, बस मुझे याद आ गया वहां का स्पेसिफिकली चितले बंधु की जो बाखरवाड़ी है, दैट इज माय फेवरेट. और ऑफ कोर्स दगड़ू सेठ के दर्शन करने के बाद हम लोग हमेशा चितले बंधु की वो बाखरवाड़ी जरूर जरूर लेने जाते थे. अमेजिंग दोस्तों, आपने सुना हाउ ब्यूटिफुली मीना मैम डिस्क्राइब्ड द प्लेस वेयर शी लिव्ड, शी लिव्स, फैंटास्टिक. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में.

0: बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत मैम। आगे बढ़ते हुए छोटा सा मासूम सा सवाल, बचपन में चलते हैं। अब बचपन मासूमियत से भरा हुआ होता है, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: एक्चुअली कैसा होता है ना कि तभी जब लड़की होती है तो बोले डॉक्टर बनेगी, लड़का हुआ तो बोले इंजीनियर बनेगा। उससे ना तो बचपन से वो ही अपने सर पे मारा जाता है कि डॉक्टर ही बनेगी, मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बने। तो क्या बनना चाहते हैं ये सोचने का शायद टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन पहले से मुझे गाने का शौक था और मैं बाथरूम सिंगर थी और चाहती थी कि कभी तो दुनिया के सामने अपनी आवाज पेश कर सकूं, और आज मुझे वो मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं इसमें।
0: वाओ वाओ, थैंक यू सो मच मैम। ये सौभाग्य हमारा है। हमें ऊपर वाले ने पता नहीं कहां से ये मैसेज मिला कि आप सब लोगों की हमें सेवा करनी है, आप सब लोगों को हमें सामने लाना है, तो बस ये काम हो रहा है। और आई एम रियली हैप्पी, एंड हमारी पूरी टीम, मैं और नितिन बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हम लोग आपकी सिंगिंग सुनते हैं। और आभार और शुक्रिया आप लोगों का है जो आप हमें अपनी गीत और संगीत से नवाज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत मीना मैम का।

0: फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारी गायकी मैम.
1: थैंक यू.
0: अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए.
1: तभी तो ज्यादा गाना सुनना भी घर में अलाउड इतना करते नहीं थे, बोलते कि नहीं डॉक्टर बनना है तो ज्यादा गाना इसमें ये करना नहीं. फिर भी मैं अमीन सयानी जी का प्रोग्राम सुनती थी चद्दर में चुपके से ट्रांजिस्टर लगा के रात में.
0: वाओ.
1: और मेरे साथ मेरी बहन संगीता, वो भी चुपके से हम दोनों चद्दर में गाने सुनते करते. और वो बहुत मीठा गाती थी, बहुत ही प्यारा गाती थी. अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका पसंद का गाना ओ मेरे सपनों के सौदागर आज भी मेरे कानों में गूंजता है. वो मेरी सबसे बड़ी प्यारी याद है बचपन की. और ये गाना अगर चाहे तो मैं आप लोगों को सुना, अगर मुझे मौका मिले तो जरूर सुनाऊंगी.
0: एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारी सी याद और बहुत रेस्पेक्टफुल याद मैं कहूंगा. और बिल्कुल मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर. ये प्यारा सा गीत आप ही की आवाज में, आप ही की इस बहुत ही प्यारी दोस्त को डेडिकेटेड है. चलिए दोस्तों, सुनते हैं यही प्यारा सा गीत.

0: मैम, आगे बढ़ते हुए आपसे बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा मजे करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों? क्योंकि आप तो ऐसी जगह रहते हो जहां पर खाने के तमाम डिशेस स्टॉल्स अवेलेबल है, सो व्हाट प्रिसाइसली डू यू लाइक इन ईटिंग?
1: एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ, कोलाबा में।
0: ओके,
1: तो कोलाबा में समंदर के बीच में मेरा घर था, तीनों बाजू से समंदर और एक रास्ता, और सामने मछली पकड़ते थे लोग, टोकरी घर आ जाती थी और फ्रेश फिश मुझे घर पे मिलता था, और वो खाके ही मैं बड़ी हुई। तो वो फिश मेरे बचपन से आदत पड़ गया, वो मेरा सबसे पसंदीदा खाना है।
0: अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग, टोटली ऑर्गेनिक एंड टोटली फ्रेश, क्या बात है।
1: Yes.
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने सुना, आई सिंसियरली होप एंड प्रे टू गॉड कि आप सब लोगों को भी इसी तरह की ऑर्गेनिक एंड फ्रेश चीजें खाने को मिलें। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। मैम दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पूछना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो भी कलाकार हमारे सामने हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, उनकी पर्सनालिटी को समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। ऐसा कौन सा गीत है, कौन सा गाना है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता हो, बयान करता हो, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो?
1: बाप रे, ये सबसे मुश्किल सवाल लगता है मुझे। एक तो खुद की तारीफ कैसे करूं बोलो।
0: डोंट वरी मैम,
1: मैं तो
0: ऊपर वाले ने सबसे अच्छा क्रिएशन मुझे बनाया है। आई एम द बेस्ट क्रिएशन। ऑफकोर्स आप जब इस बात को कहेंगी तो आप भी ऐसे ही कहेंगी दैट आई एम द बेस्ट क्रिएशन। सो एवरी वन, हर एक सिंगल इंसान इस दुनिया में जो ईश्वर ने बनाया है वो बेस्ट है, तो इसलिए अपनी तारीफ करने में जरा सा भी मत हिचकिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तारीफ खुल के कीजिए।
1: तो मैं दो गानों से मेरी खुद के बारे में बताना चाहूंगी। एक तो मैं कहूंगी, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय,
0: वाह
1: ये एक मुझे डिस्क्राइब करेगा।
0: ओके।
1: और दूसरा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
0: क्या बात है,
1: हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मतलब मैं सिगरेट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हर फिक्र को मतलब नहीं करते हुए आप चलते चलिए, बस यही। मैं ऐसे कुछ इतना टेंशन लेती नहीं हूँ, बस बिंदास सब कर चलती हूँ, यही मेरा पर्सनैलिटी है।
0: नाइस, वेरी नाइस। हमारे सभी दोस्तों को, हमारे सुनने वालों को अब ये पता चल रहा होगा कि मीना मैम किस तरह की इंसान हैं, किस तरह की शख्सियत है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनसे हमें दोस्ती करके क्या क्या मिल सकता है, कितना आनंद मिल सकता है, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी इंटेलिजेंशिया, बहुत बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं मीना मैम की आवाज में।

0: बहुत ही बढ़िया मैम। अगला सवाल भी थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत मजेदार है, और वो भी आपको अपने बारे में जानने में मदद करेगा। वो ये कि अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त भला क्यों है।
1: एक्चुअली दोस्त तो बहुत है, मतलब उनके किस किस का नाम लूं ऐसे हो जाता है। मैं बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप्स है, जैसे क्रिएटिव म्यूजिकल है, सितारों की दुनिया है, म्यूजिक रॉपर, सब मेरे अच्छे दोस्त है। वी आर द बेस्ट ग्रुप है, पावर वॉक ग्रुप है जिनके साथ मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, मेरे कॉलेज है फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स है, मेरे कॉलोनी की फ्रेंड्स है, मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, मतलब किस किस का नाम और किसके बारे में। मेरे लिए तो अच्छा दोस्त वही है जो दिल से सच्चा हो, जैसे अंदर से हो वैसे ही ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कोई मुखौटा नहीं। और एक्चुअली ऐसे मुझे बचपन में जैसे मैंने अपनी सिस्टर को देखा था और वही रूप में अपनी बेटी में भी देखती हूँ, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो बस मैं उनके लिए भी एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी, मेरी बेटी के लिए जिसको वो बहुत अच्छा लगता है, गलिया गलिया वाला सॉन्ग,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बेटी के
0: दोस्तों आपने सुना एक फ्रेंड की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, और मैम मीना मैम किस किस तरह के फ्रेंड्स को अपने आसपास रखना चाहती हैं। फ्रेंड्स की डेफिनेशन और परिभाषाएं करीब करीब यूनिवर्सली एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इसका जो फीलिंग है, इसकी जो भावना है, वो बहुत ही प्यारी होती है। ये एक इंडिविजुअल इंसान महसूस ही कर सकता है, इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो मीना मैम की बेटी को डेडिकेटेड है, जो कि इनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। तो मैम आगे बढ़ते हैं, क्या आपका कोई निक नेम है, कोई ऐसा नाम जो आपके दोस्त या परिवार वाले आपको प्यार से बुलाते हो?
1: एक्चुअली जब मैं पैदा हुई तो अक्षर आया था य। सब लोग सोचते थे कि य से क्या नाम रखे इसका। कोई बोलता था युगल किशोरी, कोई बोलता था युगल कुंडली। फाइनली मेरी नानी जो थी ना, उसने बोला कि अरे इसकी आंखें है ना फिश की तरह है, मीनाक्षी जैसे ना आंखें। तो फिर मीना, छोटा करके मीना ही रख दिया। तो अभी इतना छोटा नाम तो उसको और क्या निक नाम बोले, तो बस मुझे मीना ही बुलाते गए। और वही तो, कोई दूसरा नाम नहीं, मुझे मीना ही मेरा नाम है।
0: ओके, तो आपका निक नेम भी मीना ही रहा। ऑलराइट।
1: हाँ,
0: और क्यों? तो जाहिर सी बात है आपकी नानी जी ने यह नाम आपको दिया। बहुत cool.
1: वहां भी फिश आ गया, देखो फिश की तरह आंखें और फिश मेरा फेवरेट फूड।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं मीना मैम की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। वैसे मैम यू ही पूछना चाहूंगा, आप गलत ना समझिएगा, लेकिन अगर आपको अब अपना नाम बदलने का मौका मिले तो आप बदलेंगे क्या? और अगर बदलेंगे तो क्या नाम चाहेंगे कि आप रखें?
1: नहीं, मैं वेरी हैप्पी विथ माई नेम, मीना बहुत अच्छा नाम है और मैं वही रखना चाहूंगी।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। मैंने ये सवाल बहुत बहुत सारे लोगों से पूछा है और मजेदार वाली बात है, मुझे आज तक की डेट में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। मुझे याद है मैंने अपने बेटे से भी ये सवाल पूछा था जब वो 5th class में था, क्योंकि वहां पर हम लोग सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं। उसने भी उतनी छोटी उम्र में कह दिया था कि नहीं, मुझे मेरा नाम पसंद है और मैं उसको नहीं बदलूंगा। अमेजिंग दोस्तों, आपने सुना? गौर कीजिएगा अपने नाम की तरफ, कितना प्यारा सा नाम है वो, उसका मतलब क्या है। तो चलिए सुने एक प्यारा सा गीत मीना मैम की ही आवाज में।

0: मीना मैम, आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? मैम, ये सवाल में दरअसल मैं इसलिए पूछता हूं, मेरे सुनने वालों को कभी ऐसा लगता होगा कि ये बहुत नॉर्मल रूटीन सा सवाल है, लेकिन हमारी प्रकृति में चारों तरफ रंग बिखेरे हैं ऊपर वाले ने, और हम किसी एक रंग को पसंद करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसके बारे में लगातार विचार करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी पर उस रंग का असर आता है। मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने एक एडवर्टीजमेंट किया था एशियन पेंट्स का, जिसमें जो पंच लाइन थी उस एडवर्टीजमेंट की, वो थी कि रंग जो है वो हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। तो
1: बहुत
0: एक माँ के प्यार का रंग अलग होता है, एक बेटी के प्यार का रंग अलग होता है, एक दोस्त के प्यार का रंग अलग होता है, एक प्रेमिका के प्यार का रंग अलग होता है, एक पिता के प्यार का रंग अलग होता है। ये सब अलग अलग रंग हैं। आपकी पर्सनालिटी पे जो रंग सूट करता है उससे हमें पता चलता है कि आप कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और आपको भी मालूम पड़ता है। तो आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों?
1: मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, जो कि आकाश का कलर है, विस्तृत, अनछुआ सा, आभासी, एक ड्रीम वर्ल्ड में वो मुझे ले जाता है। बहुत कूल फीलिंग देता है, आंखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है, और वो जब भी मैं आकाश को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मेरी बहन मुझे वहां से देख रही है, तो मुझे वो और भी अट्रैक्ट करता है, तो नीला रंग मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात बताई आपने मैम, बहुत प्यारी बात। दोस्तों, आप भी विचार कीजिए, और ये तो विचार करने वाली बात हो ही गई कि कोई रंग हमें क्यों पसंद आता है। कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं, इंडिविजुअली हम डिफरेंट डिफरेंट कारणों को या रीजंस को अपना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, दिल से लगा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत डॉक्टर मीना की आवाज में।

0: अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए सिंगर्स के लिए और एमेच्योर्स के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए उनको।
1: सबसे पहले तो मैं रेडियो टनटैप हील टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। झाबुआ की आवाज आज के कलाकार कार्यक्रम के आप आरजी समीर जी और असिस्टेंट डायरेक्टर नितिन राज जी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। शीतल वारपे जिसने मुझे आपसे जोड़ा है उसका शुक्रिया। और मैं क्रांतिकारी शहीद पूज्य टंट्या मामा को भी नमन करती हूँ जो इंडियन रॉबिनहुड माने जाते थे।
0: yes.
1: और आपने अपने रेडियो चैनल को इसका नाम देकर उनको एक सही श्रद्धांजलि दी है। और झाबुआ के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जाते जाते मैं सबसे इतना ही कहूंगी कि हर मिनट कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है। हम सब बिना जाने इस कतार में खड़े हैं और जब तक जान है क्यों ना इन पलों को हम जी भर के जी ले, अपना कीमती समय किसी के लिए दे, खुशियां बांटे, अपनी आवाज सुनाए, औरों को सुने, किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। और उलझने तो सबको आती है लेकिन उसके उससे भी बाहर निकल के प्यार बांटे ताकि जाते समय आपको कोई पछतावा ना हो। और आंखों की डॉक्टर हूं तो एक बात जरूर कहूंगी कि आंखें मूल्यवान होती है, उसका ख्याल रखना, रेगुलरली जांच करवाना ना भूलना। और रही बात संगीत की तो वो तो अपना हर लम्हा साथ देती है, दुख में भी सुख में भी कोई भी गीत दिल को हमेशा तसल्ली देता है। तो संगीत की शिक्षा लेके रियाज करने से जो आनंद मिलता है वो परम आनंद है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, दैट विल बी माय सेइंग। थैंक यू वेरी मच।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत क्रिस्प, बहुत मीनिंगफुल, बहुत गहरे मैसेजेस। दोस्तों आप लोगों ने सुना, बहुत प्यारे मैसेजेस जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, संगीत से जुड़े रहने से भी बहुत बहुत बहुत सारी हमारी परेशानियां रिजॉल्व हो सकती हैं। और मिलके चलिए, जाहिर सी बात है हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलना है। तो रात को 9 बजे से 10 बजे तक संगीत सुनिए ना, फिर बड़े प्यार से सोइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना मैम, मेरा बहुत बहुत
1: और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 12 साल के बाद जब इंडिया वापस आई तो इसलिए आई थी कि मेरे हस्बैंड ने स्वदेश मूवी देखा था और उनका जो प्यार स्वदेश के लिए जाग उठा जिसे हम वापस आ गए। और उसके बाद में मैंने ये संगीत क्षेत्र में थोड़ा प्रवेश किया, सुरेश पत्की जी से थोड़ा जो कुछ भी सीखा आज वो बेस दे के मुझे कहीं ले जा रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन माय ओन कंट्री, माय ओन मिट्टी। मेरी मिट्टी के कुछ भी मुझे बड़ी पसंद आ रही है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच मैम, आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत मजा आया। थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: दोस्तों अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में

पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन टैलेंट, एक प्रतिभा, एक सिंगर आज हमारे साथ हैं। ये हैं सना आसिफ शेख जी। बाकी आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज के एक कलाकार प्रोग्राम में मैं पहले सना जी का स्वागत करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा सना जी का। तो सना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए थोड़ा सा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, बात कीजिए उनसे।
1: यस यस, सबसे पहले मैं समीर जी, आपका, नितिन जी का और आपके एसएम टीम का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे नितिन जी ने बताया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है, तो सबसे पहले मुझे थोड़ा टेंशन आया कि अरे मुझे मतलब अभी मैं क्या बताऊंगी।
0: okay.
1: मुझे ऐसा लगा ना कि हम इतने जिंदगी में इतने आगे चले गए हैं कि बहुत पीछे मुड़ के देखना भी और क्या मैं बताऊं, इस टेंशन में मैं ऐसे ही सोचती रह गई। और मैं पूरा मेरा बचपन, मेरे स्कूल का टाइम, मेरा जूनियर कॉलेज, देन मेरा डिग्री कॉलेज, ये मैं पूरा मतलब अपने आप बोलते ना जैसे ख्वाब में मैं घूम के आई, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना मतलब मैंने एक खुशी महसूस की, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबका, एसएन टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे वो सारी सारी खूबसूरत यादें मुझे मतलब वापस से, सभी तो नहीं हो गई, पर फिर भी जो कुछ मुझे यादें आ गई उससे मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका। और अगर मेरे बारे में बात करूंगी, तो वैसे मेरा जन्म जो है वो अहमदनगर, यानी अभी का जो अहिल्या नगर है, नाम चेंज हो गया है उसका, तो मैं अहमदनगर से हूँ। और वैसे मेरा पूरी, अगर हम लोग देखते ना, तो संगीतमय फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरी मम्मी म्यूजिक टीचर थी, वो पुणे आकाशवाणी रेडियो की स्टार थी, गोवा आकाशवाणी रेडियो की स्टार थी, अहमदनगर रेडियो की स्टार थी। उसने बहुत सारे दिन रात म्यूजिक प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते थे घर में। मेरे पापा भी अच्छा तबला बजाते थे, भाई अच्छा गाता है, तबला बजाता है, बहन भी थोड़ा बहुत गा लेती है। तो एक कहेंगे ना, तो संगीतमय माहौल में ही मेरा जन्म हुआ है, मैं उसमें ही पली बड़ी हुई है। पर सोचते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है आगे। तो जैसे मेरा 10th हुआ, तो मेरा शायद 12th में मेरा संगीत विशारद भी कंप्लीट हो गया था, पर जब मुझे 11th स्टैंडर्ड में डालना था जूनियर कॉलेज में, तो मम्मी पापा ने सोचा था कि चलो इनको हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक करियर उनके दिमाग में था कि मेरा म्यूजिक में करियर हो। पर जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया अहमदनगर के, मैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज में पढ़ी, तो वहां जाने के बाद में फिर होता है ना कि हमें म्यूजिक तो था ही, पर मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद आया। फिर मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके मैंने फिर स्पेशलाइजेशन मैंने साइकोलॉजी में किया, बीए किया, एमए किया। तो इस प्रकार से आगे आगे चलते गए, फिर मेरा बीएड हो गया, फिर एमएड हो गया, फिर मैंने एमए मराठी भी किया, मैंने हिंदी में एमए किया, गोल्ड मेडल भी हासिल किया। फिर मतलब मैं ऐसे आगे चलती गई और म्यूजिक जो है वो मेरा बहुत पीछे छूट गया। तो अब भी देखती हूँ ना, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैंने अगर म्यूजिक में करियर किया होता तो आज हम कहाँ पे होते। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले को शायद वो मंजूर नहीं था और हम आगे चलते रहे, फिर शादी, जॉब, बच्चे, इसमें मतलब म्यूजिक कहीं का कहीं रह गया, जैसे 11th-12th स्टैंडर्ड में ही रह गया वो भी। सो उसके आगे मैं 19 और ये 20 में मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा तुम गाओ, और मैंने ऐसे ही एक गाना रिकॉर्ड किया, तो बोला देखो मम्मी कितना अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ। तो उसने मेरा यूट्यूब चैनल किया और तब से मेरा थोड़ा थोड़ा सिंगिंग मतलब स्टार्ट हुआ, और मैं ये 4-5 सालों में मैं थोड़ा थोड़ा गाती हूँ। फिर मैं SM ये जो ऐप है उस पर भी गाती हूँ, एक हैप्पी वीवी करके ऐप है उसके ऊपर मैं गाती हूँ, वहां पे मैंने बहुत सारा म्यूजिक के इसमें जजिंग भी किया हुआ है, बहुत अच्छे ऐप है। तो इस प्रकार से मेरा संगीत का ये जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ। पर इसमें मुझे एक बात समझ में आ गई कि एकदम से आवाज चली नहीं जाती है, मतलब इतना खराब नहीं होता है आवाज हम, ठीक है इतनी परफेक्शन उसमें नहीं रहती है, पर हम सालों के बाद में भी गाते हैं ना तो वॉइस इतनी अच्छी रहती है, ये मैंने देखा। और फिर मैंने अपना म्यूजिक गाना जैसे तैसे मतलब जॉब संभाल के जैसे वक्त मिले वैसे मैं गाती रहती हूँ जी। थैंक यू।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना कि सना जी कौन है, किस तरीके से उनकी संगीत की ये जर्नी ये शुरू हुई। तो चलिए अब बहुत ज्यादा इंतजार ना करते हुए सना जी के ही गाए हुए ये बहुत ही खूबसूरत से गीतों का आनंद लेते हैं, पहले इनका लुत्फ उठाते हैं और फिर सना जी के पास वापस लौटते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया शुरुआत और बहुत ही प्यारे गीत। तो सना जी चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो पूछ लेता हूं, जिससे हमारे सभी सुनने वालों को आपकी संगीत के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है उससे थोड़ी सी बढ़कर मिल जाए, फिर हम आपको समझने के लिए आपके ऊपर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पसंदीदा गायक और गायिका आज तक की डेट में कौन रहे हैं, एक एक या दो दो आप बता सकते हैं, और भला क्यों। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आपको किस तरीके का संगीत पसंद है। आपने कहा विशारद, संगीत विशारद वगैरह भी आपने किया है, लेकिन फिर भी हर एक गायक या गायिका की अपनी एक पसंद होती है। गजल होगी, सूफी गाने होंगे, या बॉलीवुड संगीत होगा, या क्लासिकल होगा। सो दो सवाल, कौन तो आपके फेवरेट गायक गायिका हैं और किस तरीके का म्यूजिक आप पसंद करते हो, थोड़ा बताइए ना
1: जी। अगर मैं सही में आपको बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा, मतलब मुझे, मैंने जो गौर किया है, मुझे जो सॉन्ग अच्छा लगता है वो मैं गा लेती हूँ, फिर वो मतलब किसी का भी हो तो जो दिल को छूता है या दिल को अच्छा लगता है, मैं उस गाने को मतलब कोशिश करती हूँ, फिर नहीं आता है तो उसको ट्राई करती हूँ, सीखती हूँ थोड़ा और फिर गाने की कोशिश करती हूँ। फिर उसमें जेंट्स हो, लेडीज हो, मेल हो, फीमेल हो, मतलब वॉट एवर, किसी का भी सॉन्ग हो। पर फिर भी हम देखेंगे तो लता जी है, आशा जी है, और लेटेस्ट में श्रेया घोषाल जी है, ये मुझे बहुत पसंद है। और कुछ गाने गीता दत्त जी के अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो ओल्ड वाले सॉन्ग है गीता दत्त जी के।
0: जी जी, और किस तरीके का संगीत आपको पसंद है वो भी तो बताइए।
1: देखिए, मैं जब मतलब छोटी थी ना तो घर में सब क्लासिकल का ही माहौल था, तो वो टाइम पे हमने कभी मतलब फिल्मी सॉन्ग मतलब सुनते थे हम लोग, पर कभी फिल्मी सॉन्ग की तरफ हम लोग झुके ही नहीं थे। तो ज्यादा करके सब पूरा मराठी माहौल था हमारे घर में, तो मैं पूरा मराठी ही, मतलब जो मम्मी सिखाती थी वही गाती थी, या क्लासिकल वाले चीज थे, या बड़े ख्याल थे, ऐसे हम लोग गाते थे, या भावगीत, भक्ति गीत, अभंग, यही गाते थे। तो थोड़ा सा फिल्मी की तरफ मतलब कभी ऐसा हम लोगों ने गौर ही नहीं किया था। पर जब शादी हो गई, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो प्रोफेशनली गाते हैं, उनकी वजह से एक्चुअल में मैं फिल्मी गाना मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जब मैं देखती थी तो मुझे मतलब स्केल जो रहता था, तो जैसे मम्मी ने सिखाया था काली चार में मैं गाती थी, तो फिल्मी सॉन्ग बहुत हाई स्केल में होते थे तो मैं इतना गा नहीं पाती थी। पर शादी के बाद में मैं अभी काफी अच्छे तरीके से, मतलब वो रिकॉर्डेड जो स्केल होते हैं, मैं वो गाती हूँ। तो मैं दोनों सवाल जो है आपके उसका एक ही जवाब दूंगी, जो अच्छा लगे, मेरे दिल को सुकून दे, मुझे खुशी दे, मैं उसी टाइप के गाने गाती हूँ। और ज्यादा करके मुझे जो स्लो रोमांटिक सॉन्ग होते हैं वो वाले बहुत पसंद आते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल क्लियर बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए सना जी की ही गाए हुए इन गीतों का आनंद लें। तो जो उन्होंने कहा वो आपको इन गीतों में सुनाई देगा और बहुत मजा आएगा। लीजिए, पेश करता हूं।

0: बहुत खूब। चलिए सना जी, आपकी संगीत के बारे में, आपके संगीत के बारे में बात हो गई, आपके गीतों के बारे में बात हो गई, आपके म्यूजिक जर्नी के बारे में बात हो गई। आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि पूरे दिन भर में, मैं मानता हूँ आप बहुत बिजी रहते होंगे, एक किसी भी गृहिणी की तरह बहुत सारे काम आपके साथ चलते होंगे, लेकिन संगीत के लिए, गीत के लिए, गायकी के लिए आप कब वक्त निकालती हैं, कब गाती हैं, चाहे वो एस म्यूल पर हो, चाहे वो स्टार मेकर पर हो, कहीं पर भी रिकॉर्डिंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बार में तो रिकॉर्डिंग होती भी नहीं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो पूरे दिन में कब वक्त निकलता है आपके पास?
1: समीर जी, पहली बात ये, मतलब ऑफ कोर्स हर स्त्री हाउसवाइफ होती है, उसका घर का काम तो कभी चूकता नहीं है, पर मैं प्रोफेसर हूँ और मैं जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और बहुत साल पहले, मतलब जैसे मैंने बीएड और एमएड किया था, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एंड मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, उसके बाद मैं एक्चुअली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में थी, मैं एज अ लेक्चरर में पढ़ाती थी, मैंने एज अ प्रिंसिपल भी काम किया है, एंड देन कुछ रीजन मुझे वो छोड़ना पड़ा, फिर मैंने मुंबई का जो सेंट जेवियर कॉलेज है वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो एज अ प्रोफेसर मेरा मेन, मतलब जो पेशा है वो मेरा टीचिंग का है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं स्टूडेंट से बहुत अटैच रहती हूँ, ये मेन है।